0: एक ही प्लेट का मूल्यांकन मत कर, इसका कोई मूल्य नहीं है। जो खजाना तुमको मिलने वाला है उसके सामने इसका कोई मूल्य नहीं, इसकी मोह न कर, फेंको, खोदो। और पेड़ खोदा तो खोदते गया तो तांबे का मिला लक्षण, अब उसको विश्वास बढ़ता गया, ए कुछ तो मिल रहा है, पत्थर से लोहा, लोहे से तांबा। महात्मा ने कहा कि बेटा फेंक उसको भी। विवेक चूड़ामणि में भी शंकराचार्य जी ने इसका संकेत किया है, तो उसको भी फेंका। फिर खोदा तो चांदी का प्लेट मिला। महात्मा ने कहा उसको भी फेंक, खोद फिर, और गहराई में गया तो सोने का प्लेट मिला। वाह मिल गया महाराज, मिल गया महाराज, बड़ा आनंदित हुआ। क्या मिला? बोले सोने का प्लेट मिला। अरे मूर्ख, वो भी काम का नहीं है, फेंक दे और गहराई में जा। जब गहराई में गया तो वास्तव में एक घड़ा जिसके अंदर अनंत अनंत हीरा मोती जवाहरात अरबों खरबों बिल गेट के रुपया से भी ज्यादा। बोलो सुखदेव के पास जो संपत्ति है, क्या वो संपत्ति बिल गेट के पास है? बिल गेट के संपत्ति से ज्यादा सुखदेव की संपत्ति थी कि नहीं? बोलो, हैं? स्वीकार किया कि नहीं तुम लोगों ने? सुखदेव की संपत्ति का मूल्य ज्यादा है, महत्व ज्यादा है कि बिल ग्रेट्स का? ये उसको वो खजाना मिला है। तो ये दृष्टांत उस पर यह संकेत कर रहे हैं। अब देखा बाहर निकाला तो फिर अब उसको क्या भीख मांगना पड़ेगा? अब दर दर भटकना पड़ेगा? वो तो सम्राट हो गया, दुनिया में उससे बढ़कर तो और दूसरा है ही नहीं। स्वराट भवती, सम्राट भवती, छांदोग्य उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग इस तरह कहा है कि प्रतिदिन जीवात्मा उस ब्रह्म में विचरण करते हुए भी ये ब्रह्मानंद है ये अनुभव नहीं कर पाता, ये उसकी दुर्भाग्य है। इस तरह छांदोग्य उपनिषद में चर्चा की है। निहितम अक्षत्रज्ञ उपरि उपरि संचरन तो न बिंदे युहु, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। अक्षत्रज्ञ अज्ञानी व्यक्ति ऊपरी ऊपरी संचरंत, ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर से भ्रमण तो कर रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं घूम रहा है, वहीं बैठ रहा है, लेकिन अक्षत्रज्ञ उस जमीन के नीचे जो खजाना गड़ा हुआ है उसको पता नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है? संचरंतो न बिंदे हो एवं एवं इमा सर्वा प्रजा अहर अहर ब्रह्मम गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न बिंदे हो। प्रतिदिन ये क्षेत्रज्ञ प्राज्ञ नामक क्षेत्रज्ञ सुसुप्ति अवस्था में पहुंचता है, लेकिन बड़ा आनंद से सोया तो कहता है लेकिन यही ब्रह्मानंद है ये नहीं जानता, ये अपना ही आनंद है ये नहीं जानता है, इसलिए फिर जागृत में भटकने लगता है विषयों के प्रति। शंकराचार्य जी कह रहे हैं जमीन के अंदर गड़ा हुआ संपत्ति देखने के लिए आंख चाहिए, और आंख होने मात्र से दिखाई नहीं पड़ेगा। हो तंत्र में कहा जाता है, तांत्रिक लोग कुछ अंजन बनाते हैं, वनस्पतियों से, कुछ विशेष वनस्पतियों से आंख में लगाने के लिए अंजन होता है ना, सूरमा, वो बनाते हैं और उसको विशेष तिथि में उसको तंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, और तंत्र द्वारा अभिमंत्रित करने के बाद उस सूरमा को आंख में लगाते हैं तो गाढ़ अंधकार में भी उनको उसी तरह दिखता है जैसे आप उजेले में देखते हो। उस अंजन की विशेषता है। उधर संकेत किया शंकराचार्य ने, देख इसलिए अंजन की बात कर दिया। कौन सा अंजन है? ध्यान अंजन। ध्यान को वो अंजन के रूप में तुम प्रयोग करो। ध्यान अंजने न समवेक्ष तम प्रदेशम, ये देख लो। अंजन लगाने के बाद तो अंधकार में भी उसको इसी तरह दिखता है जिस तरह तुमको उजाले में दिख रहा हो। तम प्रदेशम भित्वा, अंधकार तुम्हारे दृष्टि को बाधक नहीं कर सकता है वो अंजन लगाने के बाद। महाबलि भी ही ईश्वर नाम मंत्र ही, तब शरीर रूपी जमीन में शिव रूपी खजाना, शरीर रूपी जमीन में परमात्मा रूपी खजाना गड़ा हुआ है और क्षुद्र विषयों में इंद्रियों के पीछे लगकर संसार में भटक रहा है। खजाना कहां है? शरीर रूपी खेत में वो खजाना गड़ा है, वो वहीं रह रहा है, इसी शरीर में रह रहा है, लेकिन उसको न जानने के चलते क्या हो रहा है कि क्षुद्र विषयों के प्रति इंद्रियों के पीछे लगकर भटक रहा है दीनहीन होकर। अब गड़ा हुआ धन देखने के लिए तो आंख में अंजन लगानी पड़ेगी ना भाई, है? तो अंजन क्या है? ध्यान अंजन। शिव ध्यान रूपी जो अंजन है वह तुम आंख में लगा लो तो समवेक्ष तमः प्रदेशम। वेदांत तो तुम लोग सुनते हो, आवरण शक्ति से ढका हुआ है। कूटस्थ साक्षी किससे ढका है? माया के आवरण शक्ति से ढका हुआ है। इसीलिए जहां तुम रहते हो वही वो है, जहां वो है चाहे वही तुम हो। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी है दर्शन को तरसते हैं। बोलो, जिस हृदय में तुम रह रहे हो उसी हृदय में परमात्मा भी तो रह रहा है, लेकिन आज तक एक ही कमरे में रहते हुए भी दर्शन नहीं हो पा रहा है। किसके चलते? अविद्या के पर्दे के चलते। वही तम प्रदेश हम, ये अविद्या ही यहां तम है, और वो अंधकार के चलते तुम्हारी साधारण वृत्तियों से वो दिख नहीं रहा है। तब तुम्हें वो अंधकार में भी वो खजाना दिखे इसके लिए विशेष चक्षु चाहिए, वो है ध्यानांजन। इसलिए विशेष वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उस विशेष वृत्ति को शंकराचार्य जी ने ध्यान कहा। ध्यानांजने न समवेक्ष कहां तम प्रदेशम भीत्वा, ले जी वो अंजन लगाने के बाद तो उसको अंधकार तो उसको आवृत कर ही नहीं सकता है। महाबलि भीर स्वर नाम मंत्री, अब उसको पता चलेगा कि खजाना तो यही है तो खोदना पड़ेगा कि नहीं है? तो खोदने के लिए फावड़ा क्या है, है? महाबली भी ईश्वर नाम मंत्री, उस परमात्मा के नाम रूपी मंत्र रूपी फावड़ा। कमजोर नहीं हो, महाबली भी वही बलशाली है, वही खोद सकता है, इस आवरणों को भंग कर सकता है, है? जैसे उस दृष्टांत में उसने फावड़ा लाई और खोदा, पांच पांच आवरणों को निकाल के फेंका, यही पंचकोश विवेक ही। वेदांत में पंचकोश विवेक आता है कि नहीं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये तीन क्रमशः। अन्नमय कोश पत्थर का है, है? प्राणमय कोश लोहे का है, मनोमय कोश तांबे का है, विज्ञानमय कोश चांदी का है, आनंदमय कोश सोने का है। इन पांच कोशों के अंदर खजाना है। इनको जब हटाओगे, अथा तो आदेश नेति नेति अतत व्यावृत्ति, तब जाकर आत्म खजाना मिलेगा। उस पर संकेत कर दिया है, वहां पंचकोश विवेक का है, यहां ध्यानांजन आंख में लगाओ, विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, तो ये तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। फिर वही मूला विद्या से जो आवृत्त हुआ तो वो मूला विद्या उसको आवृत्त कर नहीं पाए, ढक ना पाए, मूला विद्या को हट जाए, भित्वा तम प्रदेशम, तो साक्षात हो जाएगा। निकालने के लिए पंचकोश विवेक है ये। और यहां नाम मंत्र जप ही, तो ध्यान और जप, ध्यान से आवरण हटेगा, खजाना का पता चलेगा, और जब से आवरण हटेगा, ध्यान से खजाना का पता चलेगा कि यहां पर खजाना है, और जब से उसको ढकने वाला आवरण हटेगा। ध्यानांजने न समवेक्ष तम प्रदेशम भित्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्री दिव्याश्रितम भुजग भूषण मुद्वहंती। कहते हैं जहां खजाना होता है वहां सर्प जरूर रहता है, जहां मणि रहता है ना, खजाना रहता है, वहां सर्प पहरेदार बनकर रहता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण उद्वहंती, सर्प के द्वारा सुरक्षित किए हुए उस खजाने को उद्वहंती साधक भक्त निकाल लेता है, निकाल पाता है। तो कौन से खजाना प्राप्त होता है उसको? ये पाद पद्म मियते शिवते कृतार्था, तुम्हारे जो चरण रूपी खजाना उस भक्त को प्राप्त हो जाता है, तब उसके बाद उसका जीवन क्या होता है? कृतार्थ होता है। फिर उसको दीन दरिद्र होकर दुनिया में है भटकना नहीं पड़ता, कृतार्थ हो गया। तो ये साधन सहित साध्य की बात। तो ध्यान और जप, शिव स्वरूप ध्यान और शिव मंत्र का नित्य निरंतर जप ही साधक को शिव चरण रूपी खजाना प्राप्ति में हेतु है। तो ये काम, खजाना यही है, बस जरूरत है सुदृढ़ नाम मंत्र ही, नित्य रूपी जप रूपी कुदाली से फावड़े से खोदो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो।
1: the 24/7 spiritual channel.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ॐ प्रतिसर्याय नमः। ॐ परावरेशरुद्राय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ अलङ्घ्यशक्तये नमः। ॐ इन्द्रध्वंसनिधीशाय नमः।

सहस्रशिरसाय नमः। ॐ सहस्रशिरसे नमः। ॐ जयरूपाय नमः। ॐ सहस्रचरणाय नमः। ॐ योगिहृत्कञ्जवासिने नमः। ॐ सद्योजाताय नमः। ॐ वन्द्याय नमः। ॐ सर्वदेवमयाय

नमः ॐ अधर्मशत्रुरूपाय नमः ॐ दुन्दुभेर्मर्दनाय नमः ॐ अजातशत्रवे नमः ॐ जगत्प्राणाय नमः ॐ ब्रह्मशिरच्छेत्रे नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ कड्घिने नमः ॐ हरिकेशाय नमः

ॐ जगत्संहारकाराय नमः, ॐ त्रिधावस्थाय नमः, ॐ एकादशस्वरूपाय नमः, ॐ वह्निमूर्तये नमः, ॐ नरसिंहमहादर्

ओम परं ज्योतिषे नमः, ओम पद्मगर्भाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम तत्वाधिकाय नमः, ओम सर्गाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम श्रग्विणे नमः, ओम पांडरांगाय नमः, ओम घोराय नमः, ओम ब्रह्मरूपिणे नमः, ओम निष्कलाय नमः, ओम प्रपथ्याय नमः, ओम सामगाय

ओम भूताय नमः, ओम पंचभूतात्मने नमः, ओम अनिर्विण्णाय नमः, ओम तथ्याय नमः, ओम पापनाशकराय नमः, ओम विश्वतश्चक्षुषे नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम अनंतरूपिणे नमः, ओम सिद्धसाधकरूपाय नमः, ओम मेदिनीरूपिणे नमः, ओम अघण्यप्रतापाय नमः, ओम सुधाहस्ताय नमः, ओम श्रीवल्लभाय नमः, ओम ईध्र्याय नमः, ओम मधुराय नमः, ओम उपाधिरहिताय नमः, ओम सुकृतराशये नमः, ओम मुनीश्वराय नमः, ओम शिवानंदाय नमः, ओम रिपुघ्नाय नमः, ओम तेजोराशये नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम चतुर्मूर्ति वपुस्थाय नमः, ओम बुद्धीन्द्रियात्मने नमः, ओम उपद्रवहराय नमः, ओम प्रियसंदर्शनाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम मूलाय नमः, ओम वीतरागाय नमः, ओम नैष्कर्म्याय नमः, ओम विरूपाय नमः, ओम षट्चक्राय नमः, ओम विशुद्धये नमः, ओम कूलेशाय नमः, ओम अवनिभर्त्रे नमः, ओम भुवनेशाय नमः, ओम हिरण्यभाहवे नमः, ओम जीववरदाय नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम भाग्याय नमः, ओम चंद्रसंजीवनाय नमः, ओम हराय नमः, ओम बहुरूपाय नमः, ओम प्रसन्नाय नमः, ओम आनंदपूरिताय नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम मोक्षपलाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम विरागिणे नमः, ओम यज्ञभोक्त्रे नमः, ओम सुषेणाय नमः, ओम दक्षयज्ञविघातिने नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम विश्वपालाय नमः, ओम विश्वगर्भाय नमः, ओम गर्भाय नमः, ओम देवगर्भाय नमः, ओम संसारार्णवमग्नानां समुद्धरणहेतवे नमः, ओम मुनिप्रियाय नमः, ओम खल्याय नमः, ओम मूलप्रकृतये नमः, ओम समस्तसिद्धये नमः, ओम तेजोमूर्तये नमः, ओम आश्रमस्थापकाय नमः, ओम वर्णिने नमः, ओम सुंदराय नमः, ओम मृगबाणार्पणाय नमः, ओम शारदावल्लभाय नमः, ओम विचित्रमायिने नमः, ओम अलंकरिष्णवे नमः, ओम बहिर्मुखमहादर्पमथनाय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम निष्कलाय नमः, ओम हव्यभोज्याय नमः, ओम यज्ञनाथाय नमः, ओम मेघ्याय नमः, ओम मुख्याय नमः, ओम त्रिविष्टाय नमः, ओम अंबिकापतये नमः, ओम महादान्ताय नमः, ओम सत्यप्रियाय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम प्रियनित्याय नमः, ओम नित्यतृप्ताय नमः, ओम वेदित्रे नमः, ओम मृदुहस्ताय नमः, ओम अर्धनारीश्वराय नमः, ओम कुठारायुधपाणये नमः, ओम वराहभेदिने नमः, ओम कंकालधारिणे नमः, ओम महार्थाय नमः, ओम सुसत्त्वाय नमः, ओम कीर्तिस्तंभाय नमः, ओम कृतागमाय नमः, ओम वेदांतपठिताय नमः, ओम अश्रोत्राय नमः, ओम श्रुतिमते नमः, ओम बहुश्रुतिधराय नमः, ओम अग्राणाय नमः, ओम गंधावाग्राणकारिणे नमः, ओम पादहीनाय नमः, ओम वोड्रे नमः, ओम सर्वत्रगतये नमः, ओम व्यक्षाय नमः, ओम जननेत्राय नमः, ओम चिदात्मने नमः, ओम रसज्ञाय नमः, ओम रसनारहिताय नमः, ओम अमूर्ताय नमः, ओम मूर्ताय नमः, ओम सदसस्पतये नमः, ओम जितेन्द्रियाय नमः, ओम तथ्याय नमः, ओम परंज्योतिस्वरूपिणे नमः, ओम सर्वमर्त्याणामादिकर्त्रे नमः, ओम भुवन्तये नमः, ओम सर्गस्थितिविनाशानां कर्त्रे नमः, ओम प्रेरकाय नमः, ओम अंतर्यामिने नमः, ओम सर्वहृदिस्थाय नमः, ओम चक्रभ्रमणकर्त्रे नमः, ओम पुराणाय नमः, ओम वामदक्षिणहस्तोत्थलोकेशहरिशालिने नमः, ओम सकलकल्याणदायिने नमः, ओम प्रसवाय नमः, ओम स्वभावोदारधीराय नमः,
ఓం సూత్రకారాయ నమః ఓం విషయార్ణవమగ్నానాం సముద్ధరణ సేతవే నమః ఓం అస్నేహ స్నేహ రూపాయ నమః ఓం వార్తాతిక్రాంతవర్తినే నమః ఓం యత్ర సర్వ యతః సర్వం సర్వం యత్ర తస్మై నమః ఓం మహార్ణవాయ నమః ఓం భాస్కరాయ నమః ఓం భక్తిగమ్యాయ నమః ఓం భక్తానాం సులభాయ నమః ఓం దుష్టానాం దుష్ప్రదర్శాయ నమః ఓం వివేకీనాం విజయాయ నమః ఓం అతర్కితాయ నమః.

नमः। ओम चंद्रकोटि सुशीतलाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम गूढ़स्वरूपाय नमः। ओम दिशांपतये नमः। ओम पराय नमः। ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम समस्ताय नमः। ओम समाधये नमः। ओम एकरूपाय नमः। ओम शून्याय नमः। ओम विश्वनाभिहृदाय नमः। ओम सर्वोत्तमाय नमः। ओम कुल्याय नमः।

गम्याय नमः ओम ध्यानरूपाय नमः ओम शाश्वतैश्वर्य विभवाय नमः ओम प्राणेश्वराय नमः ओम सर्वशक्तिधराय नमः ओम धर्माधाराय नमः ओम धन्याय नमः।

ओम हिरण्यगर्भपुत्राणां प्राणसंरक्षणाय नमः। ओम दुर्वाससे नमः। ओम षड्विकाररहिताय नमः। ओम देहार्धकांताय नमः। ओम षडूर्मिरहिताय नमः। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम भवनाशाय नमः। ओम ताम्राय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम अनंतकोटिब्रह्मांडना

ओम शरण्याय नमः, ओम सुपात्राय नमः, ओम कालचक्र प्रवर्तिने नमः, ओम विचक्षणाय नमः, ओम दंष्ट्राय नमः, ओम वेदाश्वाय नमः, ओम नीलजीमूतदेहाय नमः, ओम परात्मज्योतिषे नमः, ओम शरणागतपालाय नमः, ओम महाबलपराय नमः, ओम सर्वपापहराय नमः, ओम महानादाय नमः, ओम कृष्णस्य जयदात्रे नमः।

0: इति श्री पद्मे पुराणे पञ्चपञ्चाशत् साहस्रिकायां संहितायां उत्तरभागे विल्वकेश्वर माहात्म्ये श्री कृष्ण मार्कण्डेय संवादे वेदसाराख्यं शिवसहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णं।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

नमः ओम ईश्वराय नमः ओम कामभुवे नमः ओम कामदाय नमः ओम अचिंत्याय नमः ओम किरीटिने नमः ओम कौशिकाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम कुशलाय नमः

ओचिषा निरस्तो मर्को ओ मन्थिनो ओधिष्ठानामसि अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य राजस्पोषस्य दधितारस्याम सा प्राथमा सज्ञस्कृतिर्विश्ववा आरा सप्राथमो वरुणो मित्रो अग्निः सप्राथमो बृहस्पतिश्चिकित्वाग्स्तस्मा इन्द्र आजसुतमाजुहो तस्वाहा त्रुम्पन्तु होत्र मधोर्यत्स्विष्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा ये देवासो दिव्येका आदशस्थ पृथिव्या मध्येका आदशस्थ अप्सुक्षितो महिनैका आदशस्थ ते देवासो यज्ञमिमञ्जूषध्वम् उपयाम गृहीतोऽस्याग्रजनोऽसि स्वाग्रजनः पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपातिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुं त्वं पाह्यभिसवानानि पाहि सोमः पवते सोमः पवते सोमः पवते अस्मै ब्रह्माणे पवते अस्मै क्षत्राय पवते अस्मै सुन्वते यजमानाय पवते इष ऊर्जे पावतेऽद्य ओषाधीभ्यः पवते द्यावा पृथिवीभ्याम् पवते सुभूताय पवते ब्रह्मवर्चसाय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष तेयो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयाम गृहीतोऽसीन्द्र आयत्वा बृहद्वा ते वयस्वत उत्थायुवम् गृह्णामि यत्ता इन्द्र बृहद्वयस्तस्मै इत्त्वा विष्णावे त्वैषते योनिरुक्थे।

0: सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, व्यवहार के लिए दो वस्तु की आवश्यकता है, अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते, होना और जानना। ये दो चीज हो तो व्यवहार चल सकता है। एक तो वस्तु का होना जरूरी है और दूसरा वस्तु का ज्ञान जरूरी है। वस्तु का ज्ञान हो और वस्तु न हो तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, और वस्तु हो और वस्तु का ज्ञान न हो तो भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। समस्त व्यवहार का मूल आधार ये दो चीज हैं, अस्तिता और भातिता, होनापना और जाननापना। प्रश्न ये रहा कि उन पदार्थों में जो होनापना है और जाननापना है, जाना जानापना है, ये दोनों चीज कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम्। किम तेषु तेषु वा अर्थेषु किम वा सर्वात्मनीश्वरे, ये विकल्प है। पदार्थों में वस्तुओं में जो होनापना है वो वस्तु में ही है, या वस्तु का अपना निजी है कि उस वस्तु में जो होनापना है किसी और का है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया आप ये जानते हैं कि ये पेपर वेट है, ये है कहा जाता है, इसका वनापना है पेपर वेट, और इसका वनापना पेपर वेट है। पेपर वेट तो पेपर वेट हो गया, है क्या चीज है, ये है इसका वनापना। और दूसरी बात, इस जो जाना गया है कि ये पेपर वेट है, तो जब कभी भी हमको हवा चली हुई अवस्था में कोई पेपर उड़ रहे हो तो हम तुरंत इसका प्रयोग करेंगे कि इसके द्वारा वो दबा दिया जाएगा तो वो उड़ेगा नहीं, ये पेपर के दबाने का काम में आता है क्योंकि इसका नाम पेपर वेट है। तो ज्ञान भी है। कई बार क्या होता है कि हवा उड़ती रहती कागज और ये पता नहीं कि इसे दबाना है, तो ये भान नहीं होता है तो नहीं दबा पाते। तो अस्ति और भातिता ये कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम्, ये दो चीज कहां रहते हैं। किम के तेषु तेषु भावेषु, पहला विकल्प ये हुआ, क्या जो जो पदार्थ जहां जहां दिख रहा है और जहां जहां रह रहा है, क्या तत्तत् पदार्थ में ही सन्निहित है। अस्ति भातिता, अस्तिता और भातिता, या फिर सर्वात्मनि ईश्वरे, ये दो चीज ईश्वर में है। होनापना और दिखनापना ये वस्तु धर्म है कि ईश्वर धर्म है, ये विकल्प आया। आप लोग तो पुराने सनातनी हैं और पुराने सत्संगी हैं, इसलिए आपके तरफ से जवाब तो यही हो गया कि ये दोनों चीज ईश्वर में सन्निहित हैं। लेकिन कोई आधुनिक वैज्ञानिक से पूछो, ये जो पेपर वेट है इसका होनापना ये पेपर वेट में ही है कि कहीं और है, तो आप यदि कहोगे कि ये इसका होनापना ईश्वर में सन्निहित है तो आपको मूर्ख बनाएगा। वो कहेगा कि कैसे होनापना किसी और में और होए यहां, तो मूर्ख बनाएगा। और इसका जो जाननापना है वह इसी में है कि कहीं अन्यत्र है। और आप और हम तो पुराने सत्संगी हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये दो चीज अस्तिता और भातिता ये ईश्वर में है, ये ईश्वरगत धर्म है, ईश्वरगत स्वभाव है, वस्तुगत धर्म नहीं है, वस्तुगत स्वभाव नहीं है। जैसे दाहपना और प्रकाशपना अग्नि का धर्म है, ये निर्विवाद है, प्रकाश और दाह गर्मी ये अग्नि का धर्म है, ये अग्निनिष्ठ है, अग्नि में रहता है, अग्नि को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है। सामान्य व्यवहार में हम यही मानते हैं, लकड़ी में दाहपना नहीं है और लकड़ी में प्रकाशपना नहीं है, परंतु उस लकड़ी में यदि अग्नि का संचार होता है तो अग्नि जहां विद्यमान रहता है वहां प्रकाशता भी रहता है और दाहता भी, दोनों। इसी तरह जैसे प्रकाशता और दाहता, दाहकता, ये दो धर्म अग्नि धर्म है, वस्तु धर्म नहीं, अग्नि इतर अन्य वस्तु में वे दो चीज नहीं रहते, इसी तरह होनापना और जाना जानापना, अस्तिता और भासिता, ये दोनों पदार्थों में परमात्मा में सन्निहित है, परमात्मा का धर्म है, परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा के स्वरूप है, अतः परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ में ये दो चीज नहीं हो सकते, यही उत्तर दिया। लेकिन यहां विकल्प के प्रश्न के रूप में रखा गया है, अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्च अस्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितं किं तेषु तेषु वा अर्थेषु किं वा सर्वात्मनीश्वरे। ये दो चीज तत्त्व पदार्थों में रहते हैं कि कोई सर्वात्मरूप परमात्मा में रहता है, यदि अलग अलग पदार्थ में रहते हैं माना जाए तो फिर सत यानी सत्ता अनेक मानना पड़ेगा। सत्ता अनेक मानने का मतलब हुआ कि सत वस्तु अनेक मानना पड़ेगा, इसकी सत्ता ये स्वतंत्र इसमें है और इसकी सत्ता स्वतंत्र इसमें है, इसकी सत्ता स्वतंत्र इसमें है, तो ये तीन वस्तु हैं तो ये तीन की सत्ता भी अलग अलग है, ये मानना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि सद वस्तु तीन हो गए तो जगत में अनंत वस्तुएं हैं, तब उन अनंत वस्तुओं में रहने वाला जो सत्ता है वे भी अनंत मानते हैं तो सत अनंत हो जाएगा। सत्ता का अर्थ सत है, ये बात ध्यान देना, सत्ता का अर्थ होता है सत, सत वस्तु यानी सत्ता, सत्ता माने सत, सत कभी भी अभाव नहीं होता है, वस्तु का अभाव हो सकता है लेकिन सत का अभाव नहीं होता। और दूसरी बात वेदांत का ये चिंतन है, एक ही सत वस्तु सर्वत्र सभी असत वस्तुओं में उस असत वस्तु की सत्ता बनकर रह रहा है। तो आप कहोगे तब तो फिर कोई वस्तु बाधित ही नहीं होंगे, नष्ट ही नहीं होंगे, वस्तु नष्ट होंगे लेकिन सत्ता नष्ट नहीं होगी, ये वेदांत का चिंतन है। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा दूं, जैसे मिट्टी का ये कोई घट बना तो घट बनते ही हम ये व्यवहार करते हैं कि घट अस्ति, घड़ा है, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं, घट बना घट बनते ही हम एक शब्द प्रयोग करते हैं घड़ा है, तो घड़ा हो गया कंभगिरियमान, है क्या हो गया तो है उस घड़े की सत्ता। अब वो सत्ता पहले कहां थी तो मृत्तिका में थी, वो सत्ता मृत्तिका से घट बनने पर वो सत्ता मृत्तिका की सत्ता घट में प्रतीत होने लग गया, मृत्तिका की सत्ता ही घट में प्रतीत होने लग गया, ऐसा नहीं है कि मृत्तिका को छोड़कर आ गया, क्योंकि हम सत्ता को व्यापक मानते हैं और सत्ता को एक मानते हैं। अतः जितने भी पदार्थ बनते जाएंगे, सत्ता व्यापक होने के कारण हर बने हुए पदार्थ में उसकी उपलब्धि होगी। सत्ता यदि परिच्छिन्न होती तो एक पदार्थ में उसकी अस्तित्व, उसकी उपलब्धिता रहती तो दूसरे में उसकी उपलब्धिता न होती। तो सत्ता परिच्छिन्न नहीं है, सत्ता व्यापक है, अस्तित्व व्यापक है, वनापना व्यापक है। व्यापक किस अर्थ में कि अनेक रूप में व्यापक है, ऐसा नहीं। जैसे कि इस हॉल के अंदर परमाणु व्यापक है, पृथ्वी के छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, चारों तरफ उड़ रहे हैं, लेकिन उन परमाणु के यानी वो पृथ्वी के छोटे सूक्ष्म कणों की इस हॉल के अंदर की व्यापकता वो एक के रूप में व्यापकता नहीं है। तो पूरे हॉल में लेकिन अनेक के रूप में व्यापकता है, क्योंकि परमाणु सावयव है। इस तरह उस परमाणुओं की व्यापकता वेदांत नहीं मानता है। वेदांत की व्यापकता क्या है कि जैसे इस हॉल के अंदर जो हॉल आकाश है वह एक है, एक होने के कारण पूरे हॉल में वह व्याप्त है, और एक ही आकाश इस हॉल के अंदर पूरी तरह व्याप्त होने के कारण इस हॉल के अंदर जितनी भी वस्तुएं विद्यमान रहेंगी उन सारे वस्तुओं को वो आकाश अवकाश देगा कि नहीं। हॉल के अंदर एक ही आकाश पूरे हॉल में व्यापक है, व्यापक होने के कारण इस हॉल के अंदर जो भी पदार्थ आएंगे वो हॉल आकाश उन पदार्थों को अवकाश देगा कि नहीं, जगह देगा कि नहीं, होने के लिए जगह देगा कि नहीं, ये हॉल आकाश की व्यापकता है। इसी तरह प्रकाश की व्यापकता है। जैसे हॉल के अंदर एक प्रकाश है मान लो, वह एक ही प्रकाश पूरे हॉल के अंदर व्याप्त होकर फैला हुआ है, तो इस हॉल के अंदर जितने भी पदार्थ आएंगे सभी पदार्थों को वो प्रकाशित करेगा कि नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश हॉल के अंदर प्रकाशित हो रहा है और उसी के प्रकाश से हॉल के अंदर उजाला है, प्रकाश है, तो वे सूर्य का प्रकाश हॉल के अंदर अलग अलग कणों में व्याप्त नहीं है। जैसे मिट्टी के धूल हॉल के अंदर अलग अलग कणों में व्याप्त है, इस तरह सूर्य का प्रकाश अलग अलग कणों में व्याप्त नहीं है, एक ही प्रकाश पूरे हॉल में व्याप्त है। तब वह प्रकाश हॉल के अंदर जितने भी पदार्थ आएंगे सबको वह प्रकाशित करेगा कि नहीं, करेगा। इसी तरह अस्तिता और भासिता, जैसे अस्तिता यानी स्पेसता ये आकाश में है, हॉल आकाश के अंदर जितने पदार्थ आएंगे सभी को वह स्पेस देगा, अवकाश देगा। जैसे प्रकाशता सूर्य में है, हॉल के अंदर जितने पदार्थ आएंगे वो सभी को प्रकाशित करेगा। तो आकाश ने अवकाश दिया, सूर्य के प्रकाश ने क्या किया, उन पदार्थों को प्रकाशित किया। तो यहां अवकाश सूर्य के प्रकाश में नहीं है, ध्यान देना, अवकाश सूर्य के प्रकाश में नहीं है। अवकाश देना सूर्य के प्रकाश की क्षमता नहीं है, आकाश में है, और प्रकाश करना आकाश की क्षमता नहीं है, वह फिर सूर्य में है, अलग अलग हो गए कि नहीं। क्या इसी तरह, अच्छा कुर्सी में न अवकाश देने की क्षमता है न प्रकाशित करने की क्षमता है, इसमें न अवकाश देने की क्षमता है न प्रकाशित करने की क्षमता है, इस पेपर वेट में इसको अवकाश दिया सूर्य ने, प्रकाशित किया माने अवकाश दिया आकाश ने, प्रकाशित किया किसने, सूर्य ने, और ये दोनों से भिन्न हो गया कि नहीं है, है? ये दोनों से भिन्न हो गया कि नहीं, अवकाश आकाश के अवकाश से भिन्न ये हो गए और सूर्य के प्रकाश से भिन्न ये हो गए। तो इसमें आकाश का अवकाश सूर्य का प्रकाश दोनों आकर रह रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये पेपर वेट है, बड़ा आराम से मैं समझा रहा हूं, वेदांत गणितीय सिद्धांत है आपको। अब क्या इसी तरह है? क्या इसी तरह अलग अलग चीज में अस्तिता और धातिता ये अलग अलग में है कि एक ही ईश्वर में है? तो हमारी मान्यता तो ये है, वेदांत की मान्यता क्या है, एक ही ईश्वर में अस्तिता और भातिता ये दोनों ही हैं। ईश्वर आकाश को भी अवकाश देने वाला है, ईश्वर आकाश को भी अवकाश देने वाला है और सूर्य को भी प्रकाश देने वाला है। बात समझ गए? ईश्वर आकाश को भी अवकाश देने वाला है। आज आप आकाश है कहते हो ना, आकाश का होनापना ये कहां से आया? आकाश का जो होनापना है ये तो परमात्मा से ही आया है ना। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्म। तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, जिसकी सत्ता को प्राप्त करके मृषा अपि अमृषैव भाति, जिसकी सत्ता को प्राप्त करके मिथ्या वस्तु भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। मिथ्या वस्तु क्या है? तो सर्प। उस मिथ्या सर्प को सत्ता किसकी प्राप्त हुई है? रज्जु की। रज्जु की सत्ता प्राप्त करके मिथ्या सर्प भी सत्यवत भासित होने लग गया। रज्जो यथा हेर भ्रम। तुलसीदास जी ने आगे व्याख्या दृष्टांत दी, यह सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, मृषा अपि अमृषैव भाति रज्जो यथा हेर भ्रम, जिससे रस्सी में अही का भ्रांति। तो इसी तरह ये वस्तु मृषा है, ये पेपर वेट है ही नहीं, ये ख्याल रख लेना, वेदांत की दृष्टि में ये पेपर वेट नहीं है। लेकिन जो मृथा मृषा है, पेपर वेट है ही नहीं, इसको सत्ता प्राप्त हुआ, दूसरे की सत्ता प्राप्त हो गई, तो जो नहीं है वो भी है के तरह भासित होने लग गया। और इसी तरह इसको इसमें प्रकाशता भी नहीं है, तो उसी की प्रकाशता प्राप्त होकर ये दिखने भी लग गया। तो होनापना और दिखनापना का जो व्यवहार करने लग गए हम, इसके साथ ये है दिख रहा है, हम ये दो चीज कर रहे हैं इसके साथ, तो ये दोनों होनापना और दिखनापना ये इसका नहीं है। यदि दिखनापना इसका होता तो अंधेरा में भी दिखता। बात समझ में आई कि नहीं? दिखनापना यदि इसमें होता तो अंधेरे में भी दिखता, अंधेरे में नहीं दिखता है। दिखनापना भासित होनापना इसमें होता तो सुसुप्ति में भी दिखता, गहरी निद्रा में दिखता है, ये नहीं दिखता। इसी तरह होनापना इसमें यदि इसका अपना होता तो सुसुप्ति में भी होता, गहरी निद्रा में भी इसके होनापना बाद नहीं होती, दिखनापना भी बाद नहीं होता, होनापना भी बाद नहीं होता। लेकिन गहरी निद्रा में जाते हैं तो दोनों चीज इसके बाद हो जाता है, होनापना भी बाधित, दिखनापना भी बाधित। तब क्या कहते हैं कि सुसुप्ति में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो कुछ नहीं पता किसको? जब प्रश्न करते हैं तो मुझे ये कहना पड़ता है, कुछ नहीं था वहां, कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था कहां? मैं जहां था, मैं जहां था वहां कुछ नहीं था। तुम कहां थे? सुसुप्ति अवस्था में। इसका मतलब वो अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर रहा है, कहने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, और सभी के सत्ता का निषेध कर रहा है लेकिन खुद की सत्ता का निषेध कर रहा है। कुछ नहीं थे तो तुम थे कि नहीं? तो अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति तो कह देगा कि मैं होता तो मुझे भान होता कि मैं यहां हूं, मुझे लगता मैं भी नहीं था, वो यही कहेगा, क्योंकि इतनी विचार तो कर नहीं पा रहा है वो। और जब हम उससे पूछते हैं यदि तुम नहीं थे तो कुछ नहीं था, ये भान किसको हुआ, जब पूछते हैं तो उसको झक मार कर कहना पड़ता, वो तो मुझे हुआ, पड़ता कि नहीं बोलिए, उसको झक मार कर भी ये कहना पड़ता, कुछ नहीं था ये भान किसको हुआ, तो उसको हर हालत में यही जवाब देना पड़ता कि मुझे हुआ है। इसका मतलब तुम ये कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं था, और तुम ये विरोधाभासी बोल रहे हो कि मुझे हुआ और मैं नहीं था, तुम नहीं थे तो तुम्हें कैसे भान हुआ कि कुछ नहीं था का भान कैसे हुआ। इसका मतलब है कि तुम्हारी सत्ता का कभी भी अपलाप नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में तुम अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकते हो। तो ये विचार बहुत सूक्ष्म है, विचार के ये बीज हैं, पूरे दक्षिणामूर्ति का विचार करने के लिए ये सूत्र हैं। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितं किं तेषु तेषु वार्थेषु किं वा सर्वात्मनीश्वरे। या तत्तत् पदार्थों में ही वो दो चीजें हैं कि उन पदार्थों से भिन्न सर्वात्मा ईश्वर में है। ईश्वरत्वं च जीवत्वं सर्वात्मत्वं च कीदृशम्। तब फिर ईश्वर में है कि जीव में है, ये प्रश्न फिर उठा। ये अस्तिता और भातिता ईश्वर में है कि जीव में है, तो इसका उत्तर दिया है क्योंकि जीव भी स्वतंत्र वस्तु नहीं है। ध्यान देना, जीव स्वतंत्र वस्तु नहीं है, जीव भी पराधीन वस्तु है, अन्य पदार्थों में प्रतीत होने वाली चेतना है। जीव का अस्तित्व तो अंतःकरण और अंतःकरण में उटस्थ का प्रतिबिंब, ध्यान देना, जीव उसको कहते हैं, इसी को चिदाभास कहते हैं। चिदाभास का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चिदाभास का अस्तित्व के लिए क्या चाहिए, अंतःकरण, और अंतःकरण में चित्त का आभास प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब सहित अंतःकरण, अंतःकरण सहित जो प्रतिबिंब है उसी का नाम जीवात्मा। यदि किसी प्रक्रिया से, किसी साधना से, जैसे कि वेदांत उस प्रक्रिया को बताते हैं, किसी प्रक्रिया और किसी साधन से अंतःकरण का नाश हो जावे तो जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता है। और जबकि वेदांत की प्रक्रिया अंतःकरण का नाश ही है, अंतःकरण भी बना रहे और जीव की जीवपना खत्म हो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अंतःकरण नाश होते ही जीव की जीवपना नाश हो जाए, क्योंकि उपाधि से ही जीव सिद्ध हुआ है, और जिस उपाधि से वह जीव की जीवपना सिद्ध हुई है वह उपाधि के नाश होते ही वह जीव की जीवपना भी समाप्त हो जाता है। जैसे पानी के चलते सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य पानी के अंदर प्रतीत हो रहा है, उस पानी के सोखते ही सूर्य का प्रतिबिंब भी बाधित हो जाएगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब के रूप में नहीं दिखेगा। तब बिंब सूर्य को पानी से कोई लेना देना नहीं है, बिंबभूत सूर्य को पानी से कुछ लेना देना नहीं, प्रतिबिंबभूत सूर्य को पानी से संबंध है। बात समझ गए ना, पानी का अस्तित्व है तो फिर वह प्रतिबिंब सूर्य का अस्तित्व है, पानी यदि सूख जाता है तो प्रतिबिंब सूर्य बाधित हो जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन पानी सूखने पर भी अंतरिक्षस्थ जो सूर्य है, बिंबरूप सूर्य है, उसको पानी के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह कूटस्थ को अंतकरण के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कूटस्थ को अंतकरण हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं, लेकिन चिराभास को जिसको वेदांत जीव कहता है और उसका दूसरा पर्यायवाची चिदाभास, चिदाभास कहो और जीव कहो एक ही चीज है, इसका अंतकरण में निर्भर करता है। अंतकरण है तो चिदाभास है, अंतकरण नहीं तो चिदाभास की चिदाभास पना खत्म हो जाता है, आभास पना खत्म। एक बात और ध्यान देना, चिदाभास की आभास पना खत्म, क्योंकि चित्त की चित्तता तो खत्म हो ही नहीं सकती है, चित्त की चित्तता, चित्तता चेतनता, चैतन्य की जो चेतनता है वो तो अंतकरण रहे चाहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चेतनता को अंतकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपकूटस्थ में अंतकरण नहीं है चेतनता है, ईश्वर में अंतकरण नहीं है चेतनता है, ब्रह्म में अंतकरण नहीं है चेतनता है।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Yeripatha Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum sunenge aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Nayanmar ki kahani. Inka naam hai Eripattar. मध्यकालीन चोल राजाओं की दूसरी राजधानी थी करूवर। वहां पुगल चोलन नामक सम्राट राज्य करते थे। उसी करूवर में एरिपत्तर नामक शिव भक्त भी रहते थे। वे सदा अपने हाथ में एक परशु रखते थे। शिव भक्तों को कष्ट अथवा हानि पहुंचाने की गलती या अपराध करने वाले को परशु द्वारा तत्काल दंडित करना ही उनका लक्ष्य था। एक दिन शिवकामी अंडार नामक एक वृद्ध शिव भक्त एक टोकरी में विविध रंगों के सुंदर पुष्पों का चयन कर शिव को अर्पित करने के लिए जा रहे थे। उसी क्षण सम्राट की हाथी पीछे से आ रहा था। उसने अपनी सूंड से टोकरी छीन कर उसे नीचे पटक दिया। बिखरे फूलों को देखकर वृद्ध शिवकामी आंडार अत्यंत व्याकुल हो उठे और रोने लगे। उनके हृदय के रोदन का स्वर सुनकर एरिपत्तर संत न जाने कहां से वहां आ पहुंचे। घटनाक्रम को जानकर उन्होंने तत्काल अपने परशु से सम्राट के हाथी की सूंड काट दी। हाथी के महावत और रक्षक वहां से भाग गए और सम्राट को सूचना दी, कुछ लोगों ने आपके हाथी को मार गिराया है। सम्राट ने समझा कि कोई शत्रु राजा सेना लेकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और उन्होंने तत्काल ही उस घटनास्थल पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सेना सहित उस घटनाक्रम पर पहुंचे तो राजा चकित होकर देखने लगे कि न वहां पर कोई शत्रु राजा था और न कोई शत्रु राजा की सेना। वहां तो एक एरिपत्तर स्वयं खड़े थे। सम्राट आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। पूरी घटना की जानकारी प्राप्त कर सम्राट ने बहुत दुखी मन से एरिपत्तर के समीप गए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, शिव भक्त के प्रति मेरे हाथी द्वारा जो अपराध हुआ है उसके लिए सिर्फ हाथी को दंडित करना पर्याप्त नहीं है। मैंने ऐसा अपराध होने दिया, इसलिए इसका उत्तरदायी मैं ही हूँ। न्याय के अनुसार मुझे भी दंड मिलना चाहिए। हे हेरिपत्तर, हे स्वामी, मैं इस योग्य भी नहीं कि आपके परशु से मारा जाऊं। लीजिए मेरा खड़ग, इससे मेरा अंत कर दीजिए। ऐसा कहकर राजा ने खड़ग शिव भक्त एरिपत्तर के समक्ष रख दिया। यह सुनकर एरिपत्तर संत भय से कांप उठे। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई सम्राट भी ऐसा प्रबल निष्ठावान भक्त हो सकता है। सम्राट की शिव भक्ति और उनकी विनम्रता को समझे बिना उन्होंने उनको दुख दिया। इस विचार से उनके मन में आत्मग्लानि भर उठा। ग्लानि और पश्चाताप में एरिपत्तर सम्राट की तलवार से अपनी ही गर्दन काटने को उद्यत हो गए। चौंक कर राजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस पारंपरिक अनुकंपा की भावना से परिस्थितिविश उठी हुई विपदा का प्रेम पूर्वक समाधान हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों के हृदय में जो सच्चा प्रेम और भक्ति भावना है उसे संसार के सामने उजागर करने के उद्देश्य से ही हमने यह लीला रची थी। यह शिव की ही वाणी थी। भगवत कृपा से सम्राट का हाथी भी जीवित हो उठा और पुष्प स्वतः ही टोकरी में पूर्ववत एकत्र हो गए। सम्राट पुगल चोलन ने एरिपत्तर को हाथी पर आगे बिठाया और स्वयं उनके पीछे बैठकर प्रस्थान किया। उस स्थान से कालांतर में एरिपत्तर नायनार को शिवलोक में स्थान मिला और वे कैलाश में शिवगणों के मुखिया बने। एरिपत्तर जैसे शिव भक्त भी बाहरी वेशभूषा के कारण कभी कभी लोगों के समझ में नहीं आते हैं। एरिपत्तर के मन में ऐसा पूर्वाग्रह था कि सम्राट होने के नाते पुगल चोलन संत नहीं हो सकते, परंतु सम्राट तो इतने विनम्र संत निकले कि स्वयं के लिए मृत्युदंड मांगा और यह भी कहा कि मैं आपके परशु द्वारा मारे जाने के योग्य भी नहीं, मतलब आप मेरा खड्ग से ही मुझे इस शरीर रूपी माया से मुक्त करें। इससे एरिपत्तर को सम्राट के प्रति एक नवीन दृष्टि मिली। इस कथा में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रभु प्रेम सरोवर दो संत आमने सामने आए हैं और एक दूसरे पर दोष लगाने के स्थान पर दोनों ही अपने आप को स्वयं दोषी सिद्ध करने पर दंड दिलाने की होड़ में लगे हुए थे। यह प्रेम की परिपक्व स्थिति थी। केरीपत्र संत आज भी हमारे बीच में उजागर हैं, उनके इस भक्तिभाव को आज भी लोग याद करते हैं और साथ ही सम्राट पुगलचरण को भी याद करते हैं। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Shankaracharya ji. Thank you. Om Namah Shivaya.

महेश माने परमात्मा, भगवान शिव, महान ईश महेश, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान, कर्तुम अन्यतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा, जो ईश भी है और महान भी है, इसीलिए उसका नाम महेश हुआ। महेश पद यानी परमात्मा के चरण। मान लो परमात्मा का जो चरण है वही पुष्करम पुष्कर है। पुष्करम आवसंतम, पुष्कर शब्द का अर्थ दो होता है। कोश में पुष्कर शब्द का अर्थ एक सरोवर भी होता है और पुष्कर शब्द का अर्थ आकाश भी होता है। आकाश को भी पुष्कर कहते हैं और सरोवर को भी पुष्कर कहते हैं। यहां भगवान शिव के चरण को ही आकाश की उपमा दी है। भगवान शिव का जो चरण है वो आकाश रूप है, आकाश। इसलिए भक्ति शिव चरण रूपी आकाश में रहने वाली, महेश भक्ति। आवसंती आसमंतात वसंती निवसंती इति पुष्कर पुष्करम आवसंती, आकाश में रहने वाली। कौन सी आकाश? भूताकाश नहीं, परमात्मा के चरण रूपी आकाश में। कादंबनी व कादंबनी अर्थात बादल, बादल हमेशा आकाश में ही विचरण करते हैं, है ना? बादल आकाश में ही विचरण करेंगे तो भक्ति रूपी बादल कहां विचरण करेंगे? परमात्मा के चरण रूपी आकाश में विचरण करते हैं। परितोष वर्षां कुरुते, बादल का काम क्या है? आकाश में विचरण करके बादल का काम क्या है? आजकल जो कर रहे हैं, वर्षम कुरुते, बादल वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं, इसको उपमा अलंकार बोलते हैं। यहां अलंकार प्रयोग है, उपमा अलंकार, सादृश्य उपमा अलंकार। जैसे बादल आकाश में विचरण करते हुए बारिश वृष्टि करते हैं, पानी का पानी को बरसाते हैं, इसी तरह भगवान शिव के चरण रूपी आकाश में विचरण करने वाली शिव भक्ति, शिव भक्ति व कादंबनी व वही है बादल मानो, तो वह किसकी वर्षा करते हैं? परितोष, सर्वत्र संतोष की वृष्टि करते हैं, करती है। पहले भी इस प्रकार की व्याख्या हो चुकी है। शिव भक्त किसी भी अवस्था में असंतुष्ट नहीं हो सकता। परमात्मा का भक्त किसी भी अवस्था में असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। हर अवस्था में वो संतुष्टि का ही

0: अनुभव करता है और संतुष्टि को ही व्यक्त करता है, क्योंकि संतोष परितोष, परि माने चारों तरफ से, परिता तोष परितोष चारों तरफ से हर अवस्था में हर परिस्थिति में वो संतुष्ट ही रहेगा। संसार और सांसारिक विषयों से संतुष्ट रहना ही शिव भक्त का लक्षण है। दूसरी बात, साधना में असंतोष रहना, सांसारिक पदार्थों से संतुष्ट रहना, ये भक्त का लक्षण है। भक्त साधना के माध्यम से जिस भूमिका में पहुंचता है, क्रमशः आरूढ़ आरुरुक्षु की भक्त भूमिका में रहता है। और क्योंकि भक्त आरुरुक्षु की भूमिका का है, इसलिए साधना काल में वो जिस भूमिका में पहुंचता है वहां वो संतुष्ट नहीं रहता। भक्तों की भूमिका में वो संतुष्ट रह जाए तो आगे उसकी साधना बढ़ेगी ही नहीं। भोग भूमिका में वह संतुष्ट है, योग भूमिका में वह असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, इस चौथे प्रकार के जो ज्ञानी भक्त हैं उस भूमिका में जब तक नहीं पहुंचेगा, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, उस भूमिका में जब तक नहीं पहुंचेगा भक्त संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि का लक्षण होता है इत्यलम। संतुष्टि का लक्षण क्या है? इत्यलम, जो है जहां है वो ठीक है। असंतुष्टि का लक्षण क्या है? इतनी से पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए। अनलम, अलम बुद्धि तो हो ही नहीं सकता है असंतुष्टि। तो अलम बुद्धि जहां हो तो उसको संतोष कहते हैं। तो साधना में अनलम और भोग भूमिका में अलम बुद्धि, यही भक्तों का लक्षण है। आप लोगों ने सुना है, पत्नी मरी सुना तो भलो थयो भागी जंजाल, है ना नरसिंह मेहता? यही तो आलम बुद्धि है, यही तो आलम बुद्धि है, यही तो संतोष बुद्धि है। ठीक हुआ, महात्मा लोग जो बहुत सुनाते हैं, ईश्वर जो करता है ठीक करता है, तो भक्त की दृष्टि तो यही नहीं है, ईश्वर जो करता है वो ठीक करता है, गलत कर ही नहीं सकता है। हमारी अपेक्षा से वह गलत हो जाता है, लेकिन ईश्वर की तरफ से वो गलत नहीं होता। गलती और सही का मूल्यांकन तो हम करते हैं, हमारे अपने दृष्टिकोण से, अपने मापदंड से हम जब समीक्षा करते हैं तब तो जो हमारे अनुकूल हो गया वो सही हो गया, जो हमारे प्रतिकूल हो गया तो गलत हो गया। अब हम ये विचार नहीं कर सकते हैं आज का जो प्रतिकूल है, संभव है कि कल वह अनुकूल हो जावे, उसके लिए आज यह प्रतिकूल किया है परमात्मा ने। तब ये सोचेंगे तो आज का प्रतिकूल भी हमारे लिए अनुकूल ही है, लेकिन हम इतने अतार कर लेते हैं, इतनी जल्दीबाजी कर लेते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी प्रसंग हो, प्रतिकूल तो होनी ही नहीं चाहिए। अब ये संभव है ही नहीं, तो आप लोगों ने बहुत सुना है परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, कहानी बहुत बार सुना है आप लोगों ने। एक राजा था और एक मंत्री था। राजा की मान्यता थी कि हम जो करें वो सही हो, और जब तक हम बुद्धि लगाकर ना करें तब वो गलत हो जाता है। तो इसलिए अपने को ही करना चाहिए, तभी सही होगा, दूसरा का किया हुआ सही नहीं हो सकता है। तो मंत्री का कहना था कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है, इसलिए ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर जो करता है सही करता है, गलत नहीं करता ईश्वर। तो एक बार राजा अपने तलवार को साफ कर रहा था तो अपने उंगली कट गई, तो जोर से चिल्लाया राजा, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज। बोले देखो अपनी ही तलवार से अपनी उंगली कट गई। ईश्वर जो करता है सही करता है महाराज। तो राजा को तो गुस्सा आ गया, ते मूर्ख कहीं का, हमारी उंगली कट गई और तू कहता है ईश्वर जो करता है सही करता है। ऐसा भी ईश्वर कैसा, किस काम का भाई जो हमारी उंगली कट जाए। अक्सर हम लोग यही कहते हैं ना, अक्सर हम यही कहते हैं ना, हमारे दुश्मनों को घाटा हो जाए तब तो समझ में आता है कि ईश्वर जो करता है सही करता है।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Vande Deva Umapatim Suraguru

0: तम नमामि रामं रघुवंशनाथम।
1: लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस सृष्टि के आदिकाल से मैंने जीवों के कल्याण के लिए दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, दो प्रकार की निष्ठा बताई है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, हे अनघ, मया पुरा द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता बताया है। कौन सी? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो ज्ञानी हैं उनके लिए सांख्य निष्ठा, कर्मयोगेन योगिनाम और कर्मयोगियों के लिए योग निष्ठा। इस प्रकार की दो प्रकार की निष्ठा अर्थात दो प्रकार की प्रवृत्ति जीवों में अनादिकाल से दिखाई देती है। इसी को ही प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। ये क्यों बताई है? ब्रह्म सूत्र में दो प्रकार की उपासना बताई है, मूर्तंचा मूर्तंच। ईश्वर के दो रूप है, एक मूर्त और एक अमूर्त। आज का जो पर्व है ये शिव पर्व है, शिव पर्व। शिवरात्रि का दिन है कि नहीं? आज आज क्या है? शिवरात्र। शिव का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, जो कल्याण स्वरूप है। शिवम कल्याणम अर्थात जो कल्याण स्वरूप है वही क्या है? शिव है। परमात्मा के दो रूप है, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त रूप भजनीय है और अमूर्त रूप जाननीय है। उपासना भजन मूर्त रूप की होती है, परंतु जानना अमूर्त रूप को चाहिए। भजन के साथ साथ जानना भी हो तो भजन भक्ति बन जाता है, और यदि भजन के साथ जानना नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भजन पुण्य बन जाता है। पुण्य, आप कहेंगे कि भजन भक्ति बनना और भजन पुण्य बनना इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। भक्ति भजन भक्ति बन जाए तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, और भजन पुण्य बन जाए तो लोकांतरों की प्राप्ति होगी। पुण्य का फल परमात्मा नहीं है, भक्ति परमात्मा को मिला सकती है, पुण्य सुख को मिला सकता है, पुण्य सुख दे सकता है, परंतु पुण्य परमात्मा नहीं दे सकता है। अब प्रश्न है कि भजन भक्ति बनना चाहिए या भक्त भजन पुण्य बनना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब परमात्मा को बिना जाने बिना समझे यदि भजन करते हैं तो वो पुण्य जरूर होगा और उससे आपको सुख जरूर मिलेगा, दुख की हानि जरूर होगी, हो सकता है उत्तम लोक की प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परमात्मा के नाम में शक्ति है। अग्नि को जानकर के स्पर्श करोगे तब भी हाथ जलेगा और अनजान में भी स्पर्श होगा तब भी हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना है। इसी प्रकार से परमात्मा का भजन जानकर के करोगे तब भी फल मिलेगा, अनजान में करोगे तब भी फल मिलेगा, परंतु फल में अंतर होगा। भजन भक्ति बनना चाहिए, भजन पुण्य नहीं बनना चाहिए। तो भजन भक्ति कैसी बनेगी? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है रस। रस भजनम नाम रसनम, भजन रस बन जाए। क्या बनना चाहिए? भजन जो है वो रस बनना चाहिए। कौन सा रस? साहित्य में नवरस है, नवरस है ना, आप लोग जानते ही है, परंतु ये साहित्य के रस भजन से नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखो। श्रृंगार रस, करुण रस आदि आदि जो साहित्य में जो नवरस बताए वो तो शब्द जन्य रस है, ध्यान रखना, शब्द के लालित्य से उत्पन्न होने वाले भाव। देखो भजन शब्द शब्द नहीं है, हम तो राम राम का राम राम जपते हैं या तालियां पिटने लगते हैं या मंजीरा ढोल चिमटे बजाने लगते हैं तो कहते भजन हो गया। भजन का अर्थ होता है हमारे मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का समर्पण। केवल वाणी नाम जपती है परंतु मन विषयों में भटकता है, आंख रूपों को देखती है, कान शब्दों को सुनते हैं। तुकाराम ने ऐसी भजन की निंदा की है, भजन ते ओंगळवाने नरका जाने चुके ना, ऐसा भजन जहां आप इंद्रियों की दौड़, मन की दौड़, भोगों की ओर हो, विषयों की ओर हो, वो भजन नहीं होता है। इसलिए भजन में बड़ा संयम चाहिए। और जिस भजन में संयम नहीं है वो असंयमित भजन परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकता है, वो भक्ति नहीं बन सकता है। भक्ति इतनी कठिन नहीं, सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। हां ये धर्म है, ध्यान रखना, ये सत्कर्म है, जो हम मंदिर में जाते हैं, नाम जपते हैं, ये सत्कर्म है, ये धर्म है। हां, ये पुण्य जरूर देगा तुम्हें, परंतु परमात्मा को नहीं मिला सकता है, ध्यान रखो। इसलिए आजीवन आप ये करते रहे, आपके जीवन में से ना भय समाप्त हुआ, ना काम क्रोध आदि विकारों का प्रवाह मिटा, ना आपकी बुद्धि में स्थिरता आई, ना मन में शांति मिली। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमारा भजन, हमारे भजन में कुछ त्रुटि है। इस पर गौर करने की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भजन में संयम होना चाहिए। संयम, संयम का अर्थ बांध करके रखना नहीं होता है। हमारी गति एक वस्तु में चलना चाहिए, उसका नाम संयम है। जैसी गोपियों का इंद्रियों की गति, मन की गति, बुद्धि की गति एक ही श्याम सुंदर में चल रही थी। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावड़े जन धन माता पिता। तुकाराम ने कहा है कि एक विषय बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक विषय। हमारे तो कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है ना? इंद्रिया कुछ करती है तो मन कुछ कहता है, तो बुद्धि कुछ जानती है। एकता नहीं है, और एकता के बिना भक्ति नहीं है, ध्यान रखना। जो इंद्रिया जिधर जा रही है उधर ही मन जाना चाहिए, उधर ही बुद्धि जाना चाहिए। ये तीन आपके पास साधन है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रिया कुछ कहे, परमात्मा का नाम, वाणी परमात्मा का नाम जपे, परंतु मन किसी भोग की इच्छा करे वो ठीक नहीं है। जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु जो तुम्हें फल चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि भजन भक्ति बनना चाहिए, भजन पुण्य नहीं बनना चाहिए। और सगुण साकार के लिए भजन आवश्यक है, समझे? जो भी परमात्मा का रूप आपने मन में धारण किया हुआ है वो रूप परमात्मा का ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, चाहे कोई भी रूप हो, रूप का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि रूप सत्य नहीं है, वो भजनीय है, वो साधन है, स्वरूप की तरफ ले जाने का रूप साधन है। और रूप साध्य नहीं है, स्वरूप साध्य है। इसलिए किस रूप को आप भजते हो वो प्रश्न नहीं है, परंतु भजते कैसे हो इसका महत्व है, ध्यान रखो। क्या भजते हो उसका महत्व नहीं है, कैसे भजते हो। विषयों का चिंतन करते हुए भजते हो या परमात्मा का चिंतन करते हुए भजते हो? भक्ति का सिद्धांत है परमात्मा का बन करके परमात्मा को भजो। क्या पहले हमें परमात्मा का बनना होगा, फिर परमात्मा को भजना होगा, तब भक्ति होता है, ध्यान रखना। हम बनते हैं संसार को और भजते परमात्मा को, तो बनोगे किसका? परमात्मा का कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा है कि भजन पुण्य होता है, भक्ति नहीं। हमें लगता है कि हम परमात्मा को बहुत भजते हैं, परंतु उस भजने का फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम परमात्मा के बने ही नहीं हैं। इसलिए भक्ति में भागो भक्ति, अर्थात परमात्मा के भाग में आप रहो। इसलिए तो भक्ति में त्वदीय भक्ति, मदीय भक्ति बताई जाती है। आप परमात्मा का बनने के बिना परमात्मा आपका बनेगा कैसा? वो तो फिर परमात्मा के साथ व्यापार हो जाएगा। जैसा आप किसी बनिया के दुकान पर जाते हो, बनिया को कुछ देते हो, उसके बदले में बनिया तुम्हें कुछ देता है, तुम लेकर के अपने घर में आ जाते हो, तो क्या बनिया के बन सकते हो? क्या बनिया तुम्हारा बनेगा? ना तो उसके बनोगे, ना वो तुम्हारा बनेगा, क्या संबंध रहेगा? ऐसा ही तुम जितना भजन करोगे उतना परमात्मा उसके बदले में तुम्हें दे देगा, थोड़ा सा आनंद देगा, थोड़ा सा सुख देगा, परंतु परमात्मा तुम्हारा नहीं बनेगा, क्योंकि आप परमात्मा के नहीं बने हैं, तो परमात्मा भी आपका नहीं बन सकता है। इसलिए देवो भूत्वा देवम एजेत, ये कहा है, पहला परमात्मा का बनो और फिर परमात्मा को भजो। इसलिए समर्पण की आवश्यकता भक्ति के अंदर बताई है, आत्मनिवेदन अर्थात अपने को दे देना। भले तुम रहो संसार में, परंतु बनो परमात्मा का, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप चिंता मत करिए संसार बिगड़ जाएगा, वास्तविक उत्तम संसार ज्ञानी का ही होता है, समझ रही ना? भक्त का ही उत्तम संसार होता है, भक्त का संसार आनंदमय होता है, आनंदमय सुखमय होता है। अवघात संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोक, तुकाराम कहते हैं। मैं संपूर्ण संसार को सुखमय बना दूंगा और आनंद से संपूर्ण त्रैलोक्य भर दूंगा, क्या आप कह सकते हो ऐसा? बोलो, क्यों? तुकाराम पहले परमात्मा का बन गए, तब परमात्मा का बनने से तुकाराम का संसार सुखरूप हो गया। तुम्हारा संसार सुविधा रूप है, सुखरूप नहीं है। क्या आपका संसार सुविधा रूप है, परंतु सुखरूप नहीं है? जहां सुख होता है वहां सुविधा हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सुविधा में सुख होता ही नहीं है, ध्यान रखो। क्या तुम्हारी ये झूठी कल्पना है कि ये हमारे पास होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो हमारे पास होगा हम सुखी हो जाएंगे? बंबई में जब आता है ना, तब उसके पास कोई फ्लैट नहीं होता है, प्लेटफार्म पर सोना पड़ता है, तो कहता है कि एक फ्लैट हो जाए, हे भगवान थोड़ी कृपा कर मेरे ऊपर और एक फ्लैट हो जाएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, है ना? आप लोगों के बंगले बने हो कितने सुखी हुए हैं, मैं पूछता हूं। सुविधा में सुख नहीं, हम सुविधाओं में सुख खोज रहे हैं। सुख परमात्मा में है, परंतु हम संसार में सुख खोज रहे हैं, सुविधाओं में, विषयों में, भोगों में सुख देख रहे हैं। नहीं, भक्त का संसार सुखरूप होता है और संपूर्ण त्रैलोक्य को वो आनंद से भर देता है। त्रैलोक्य का अर्थ होता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वो तीनों काल में आनंद रूप रहता है, आनंद रूप। हमारा संसार दुख रूप होता है, क्योंकि सुविधा में हम सुख देख रहे हैं। इसलिए सुख देखना हो तो परमात्मा में सुख देखो, सुख देखना हो तो आत्मा में सुख देखो, वही कल्याण है। और आज का शिव पर्व है, शिव पर्व अर्थात कल्याण का पर्व है। कल्याण बाहर नहीं होता है, ध्यान रखना। कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का तात्पर्य, कल्याण का अर्थ क्या समझते हो आप? क्या कोई वस्तु प्राप्त होना कल्याण है? पुत्र की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना, घर की प्राप्ति होना, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना, क्या इसका नाम कल्याण है? कल्याण का मतलब होता है बंधन से मुक्ति। क्या कल्याण का मतलब क्या होता है? बंधन से मुक्ति। आज का पर्व बंधन से मुक्ति का है। जो हम बंधे हुए हैं उस बंधन से छूटने का नाम कल्याण है। कोई वस्तु प्राप्त होना कल्याण नहीं है। जैसा आप समझते हैं कि पुत्र की शादी हो गई तो पुत्र का बड़ा कल्याण हो गया कहते हैं, है ना? वास्तविक शादी की कि बर्बादी की है? आप बताओ कि आपका कितना कल्याण हुआ? शादी आप लोगों ने की, कितना कल्याण हुआ है? कोई छाती पर हाथ लगाकर कह सकते हो कि हमारा कल्याण हुआ है? क्यों? परंतु बर्बाद हुए कह सकते हो कि नहीं कहते हो? कहा महाराज क्या करे, बर्बाद हो गया, हम तो लुट गए, है ना? अर्थात जो हम बंधन में बंधे हुए हैं उस बंधन से छूटने का नाम कल्याण है। किस बंधन में बंधे हैं और उस बंधन से छुड़ाने वाली भक्ति है, ध्यान रखो। क्या? इसलिए तो भक्तिरेव गरीयसी कहा है। भक्ति सभी साधनों में श्रेष्ठ बताई है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। बंधन से छूटने वाले, छुड़ाने वाले जितने साधन हैं उन साधनों से सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। समझ रही ना? धर्म भी तुम्हें बंधन से छुड़ाता है, परंतु अल्प बंधन से, थोड़े वस्तुओं से, वस्तुओं के बंधन से। आप किसी वस्तु को दान देते हो, उस वस्तु की आसक्ति तुम्हारे अंदर से छूट जाती है कि ये हमने दे दिया, छोड़ दिया उस आसक्ति। धर्म भी तुम्हें आसक्ति से छुड़ा लेता है, परंतु विषयाशक्ति से धर्म तुम्हें छुड़ा सकता है, विषयों के बंधन से तुम्हें छुड़ा सकता है। परंतु भक्ति तुम्हें अपने बंधन से छुड़ाती है, ध्यान रखो। क्या करती है? भक्ति विषयों के बंधन से नहीं छुड़ाती है, तो तुम्हें अपने बंधन से छुड़ाती है। तुम अपने बंधन से बंधे हुए हो और उसी छूटने का नाम ही वास्तविक कल्याण है। क्या? पत्नी के बंधन से या पति के बंधन से या घर के बंधन से छूटना कल्याण नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे तो बैरागी बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने घर छोड़ दिया है, बाल बच्चों को छोड़ा है, धन संपत्ति को छोड़ा है, नंगे घूमते हैं पशु के समान, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बंधन से छूटे हैं।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
3: डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द फॉलोइंग इज अथर्वण वेद सौनक शाखा कांडम 1 सूक्त 5। थैंक यू।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव कीर्तनास। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन कैलासपते सॉन्ग संग बाय श्री चेम्बई वैद्यनाथ भागवतर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ॐ पूज्याय नमः। ॐ परमेष्ठिने नमः। ॐ विकर्तनाय नमः। ॐ सूर्म्याय नमः।

नमः ॐ सहस्रशिरसे नमः ॐ जयरूपाय नमः ॐ सहस्रचरणाय नमः ॐ योगिहृत्कञ्जवासिने नमः ॐ सद्योजाताय नमः ॐ वन्द्याय नमः ॐ सर्वदेवमयाय

नमः ओम परं ज्योतिषे नमः ओम पद्मगर्भाय नमः ओम सलिलाय नमः ओम तत्वाधिकाय नमः ओम सर्गाय नमः ओम दीर्घाय नमः ओम श्रग्विणे नमः ओम पांडरांगाय नमः ओम घोराय नमः ओम ब्रह्मरूपिणे नमः ओम निष्कलाय नमः ओम प्रपथ्याय नमः ओम सामगाय

ओम भूताय नमः, ओम पंचभूतात्मने नमः, ओम अनिर्विण्णाय नमः, ओम तथ्याय नमः, ओम पापनाशकराय नमः, ओम विश्वतश्चक्षुषे नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम अनंतरूपिणे नमः, ओम सिद्धसाधकरूपाय नमः, ओम मेदिनीरूपिणे नमः, ओम अघण्यप्रतापाय नमः, ओम सुधाहस्ताय नमः, ओम श्रीवल्लभाय नमः, ओम ईध्र्याय नमः, ओम मधुराय नमः, ओम उपाधिरहिताय नमः, ओम सुकृतराशये नमः, ओम मुनीश्वराय नमः, ओम शिवानंदाय नमः, ओम रिपुघ्नाय नमः, ओम तेजोराशये नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम चतुर्मूर्ति वपुस्थाय नमः, ओम बुद्धीन्द्रियात्मने नमः, ओम उपद्रवहराय नमः, ओम प्रियसंदर्शनाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम मूलाय नमः, ओम वीतरागाय नमः, ओम नैष्कर्म्याय नमः, ओम विरूपाय नमः, ओम षट्चक्राय नमः, ओम विशुद्धये नमः, ओम कूलेशाय नमः, ओम अवनिभर्त्रे नमः, ओम भुवनेशाय नमः, ओम हिरण्यभाहवे नमः, ओम जीववरदाय नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम भाग्याय नमः, ओम चंद्रसंजीवनाय नमः, ओम हराय नमः, ओम बहुरूपाय नमः, ओम प्रसन्नाय नमः, ओम आनंदपूरिताय नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम मोक्षपलाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम विरागिणे नमः, ओम यज्ञभोक्त्रे नमः, ओम सुषेणाय नमः, ओम दक्षयज्ञविघातिने नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम विश्वपालाय नमः, ओम विश्वगर्भाय नमः, ओम गर्भाय नमः, ओम देवगर्भाय नमः, ओम संसारार्णवमग्नानां समुद्धरणहेतवे नमः, ओम मुनिप्रियाय नमः, ओम खल्याय नमः, ओम मूलप्रकृतये नमः, ओम समस्तसिद्धये नमः, ओम तेजोमूर्तये नमः, ओम आश्रमस्थापकाय नमः, ओम वर्णिने नमः, ओम सुंदराय नमः, ओम मृगबाणार्पणाय नमः, ओम शारदावल्लभाय नमः, ओम विचित्रमायिने नमः, ओम अलंकरिष्णवे नमः, ओम बहिर्मुखमहादर्पमथनाय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम निष्कलाय नमः, ओम हव्यभोज्याय नमः, ओम यज्ञनाथाय नमः, ओम मेघ्याय नमः, ओम मुख्याय नमः, ओम त्रिविष्टाय नमः, ओम अंबिकापतये नमः, ओम महादान्ताय नमः, ओम सत्यप्रियाय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम प्रियनित्याय नमः, ओम नित्यतृप्ताय नमः, ओम वेदित्रे नमः, ओम मृदुहस्ताय नमः, ओम अर्धनारीश्वराय नमः, ओम कुठारायुधपाणये नमः, ओम वराहभेदिने नमः, ओम कंकालधारिणे नमः, ओम महार्थाय नमः, ओम सुसत्वाय नमः, ओम कीर्तिस्तंभाय नमः, ओम कृतागमाय नमः, ओम वेदांतपठिताय नमः, ओम अश्रोत्राय नमः, ओम श्रुतिमते नमः, ओम बहुश्रुतिधराय नमः, ओम अग्राणाय नमः, ओम गंधावाग्राणकारिणे नमः, ओम पादहीनाय नमः, ओम वोड्रे नमः, ओम सर्वत्र गतये नमः, ओम व्यक्षाय नमः, ओम जननेत्राय नमः, ओम चिदात्मने नमः, ओम रसज्ञाय नमः, ओम रसनारहिताय नमः, ओम अमूर्ताय नमः, ओम मूर्ताय नमः, ओम सदसस्पतये नमः, ओम जितेन्द्रियाय नमः, ओम तथ्याय नमः, ओम परंज्योतिस्वरूपिणे नमः, ओम सर्वमर्त्याणामादिकर्त्रे नमः, ओम भुवन्तये नमः, ओम सर्गस्थिति विनाशानां कर्त्रे नमः, ओम प्रेरकाय नमः, ओम अंतर्यामिने नमः, ओम सर्वहृदिस्थाय नमः, ओम चक्रभ्रमणकर्त्रे नमः, ओम पुराणाय नमः, ओम वामदक्षिणहस्तोत्थलोकेशहरिशालिने नमः, ओम सकलकल्याण

नाम समुद्धरण सेतवे नमः। ओम अस्नेह स्नेह रूपाय नमः। ओम वार्तातिक्रांतवर्तिने नमः। ओम यत्र सर्व यतः सर्वं सर्वं यत्र तस्मै नमः। ओम महार्णवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भक्तिगम्याय नमः। ओम भक्तानां सुलभाय नमः। ओम दुष्टानां दुष्प्रदर्शाय नमः।

शुभाय नमः, ओम कर्पूर देहाय नमः, ओम सर्पहाराय नमः, ओम संसारपाराय नमः, ओम कमणीयाय नमः, ओम वह्निदर्प विघाताय नमः, ओम वायुदर्प विघातिने

नमः। ओम हिरण्यगर्भपुत्राणां प्राणसंरक्षणाय नमः। ओम दुर्वाससे नमः। ओम षड्विकाररहिताय नमः। ओम देहार्धकांताय नमः। ओम षडूर्मिरहिताय नमः। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम भवनाशाय नमः। ओम ताम्राय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम अनंतकोटिब्रह्मांडना

नमः ओम भ्राजिष्णवे नमः ओम भोजनाय नमः ओम भोक्त्रे नमः ओम भिक्षाभुजे नमः ओम भोजनप्रियाय नमः ओम भूति

नमः ओम ईश्वराय नमः ओम कामभुवे नमः ओम कामदाय नमः ओम अचिंत्याय नमः ओम किरीटिने नमः ओम कौशिकाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम कुशलाय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

आयोभूषशुचिपा उपानः सहस्रं ते नियुतो विश्ववारा उपो ओते अन्धो मद्यामयामि यस्य देवदधिषे पूर्वपेयं वायवे त्वा इन्द्रावायु इमे सुता उपप्रयोभिरागातम् इन्दावो वामुषन्तिः उपयामगृहीतोऽसि वायवा इन्द्रवायुभ्यां त्वैषते यो निःसजोषोऽभ्यां त्वा अयं वाम् मित्रा वरुणा सुतः सोमार्ता वृधा ममेदिह श्रोतज्ञहवम् उपयामगृहीतोऽसि मित्रा वरुणाभ्यां त्वा राया वयज्ञसा

यजमानम् संजग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्रशो ओचिषा निरस्तश्चण्डः शुक्रस्य अधिष्ठानमसि अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य राजस्पोषस्य दधितारस्याम सा प्राथमा सज्ञस्कृतिर्विश्ववा आरास प्राथमो वरुणो मित्रो अग्निः सप्राथमो बृहस्पतिश्चिकित्वाग्निस्तस्मा इन्द्र आयसुतमाजुहोत स्वाहा तृम्पन्तु होत्रामधोर्यत्स्विष्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा अयं वेनश्चोदयतृष्णीगर्भा ज्योतिर्जरायुरजासो विमाने इममपाज्ञसङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रा मतिभिरिहन्ति उपयाम गृहीतोऽसि मर्कायत्वा मनो न येषु हवानेषु तिग्मम्।

0: न इन्द्र इद्विषो सपत्ना समानसस्करते
1: यस्ते यद्रप्सस्कन्दाति यस्ते अज्ञाशर्ग्रावच्युतो धिषणायोरुपस्थात् अध्वर्योर्वापरिवायः पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनसा वषट्कृतज्ञः स्वाहा देवानामुत्क्रमा नमसि उपयामगृहीतोऽसि मधावे त्वोपयामगृहीतोऽसि माधावाय त्वा उपयामगृहीतोऽसि शुक्राय त्वोपयामगृहीतोऽसि शुचाय त्वा उपयामगृहीतोऽसि नभासे त्वोपयामगृहीतोऽसि नभस्याय त्वा उपयामगृहीतोऽसीशे त्वोपयामगृहीतोऽस्यूर्जे त्वा उपयामगृहीतोऽसि सहासे त्वोपयामगृहीतोऽसि सहस्याय त्वा उपयामगृहीतोऽसि तपासे त्वोपयामगृहीतोऽसि तपस्याय त्वा उपयामगृहीतोऽस्यज्ञः सस्पतये त्वा इन्द्र अग्नि आगातज्ञः सुतङ्गीर्भिर्नभो वरेण्यम् अस्य पातन्धियेशिता उपयामगृहीतोऽसीन्द्राग्निभ्यां त्वैषते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा आघाये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवासखा उपयामगृहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यां त्वैषते योनिरग्नीन्द्राभ्यां त्वा ओमा आसश्चर्षणी धृतो विश्वे देवास आगाता दाश्वाग्न्यसो दासुषस्सुतम् उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष तेजो निर्विश्व

0: यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, व्यवहार के लिए दो वस्तु की आवश्यकता है। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते, होना और जानना। ये दो चीज हो तो व्यवहार चल सकता है। एक तो वस्तु का होना जरूरी है और दूसरा वस्तु का ज्ञान जरूरी है। वस्तु का ज्ञान हो और वस्तु न हो तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, और वस्तु हो और वस्तु का ज्ञान न हो तो भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। समस्त व्यवहार का मूल आधार ये दो चीज हैं, अस्तिता और भातिता, होनापना और जाननापना। प्रश्न ये रहा कि उन पदार्थों में जो होनापना है और जाननापना है, जाना जानापना है, ये दोनों चीज कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम्। किम तेषु तेषु वा अर्थेषु किम वा सर्वात्मनीश्वरे, ये विकल्प है। पदार्थों में वस्तुओं में जो होनापना है वो वस्तु में ही है, या वस्तु का अपना निजी है कि उस वस्तु में जो होनापना है किसी और का है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया आप ये जानते हैं कि ये पेपर वेट है, ये है कहा जाता है, इसका होनापना है पेपर वेट, और इसका होनापना पेपर वेट है। पेपर वेट तो पेपर वेट हो गया, है क्या चीज है, ये है इसका होनापना। और दूसरी बात, इस जो जाना गया कि ये पेपर वेट है, तो जब कभी भी हमको हवा चली हुई अवस्था में कोई पेपर उड़ रहे हो तो हम तुरंत इसका प्रयोग करेंगे कि इसके द्वारा वो दबा दिया जाएगा तो वो उड़ेगा नहीं, ये पेपर के दबाने का काम में आता है क्योंकि इसका नाम पेपर वेट है। तो ज्ञान भी है। कई बार क्या होता है कि हवा उड़ती रहती कागज और ये पता नहीं कि इसे दबाना है, तो ये भान नहीं होता है तो नहीं दबा पाते। तो अस्ति और भातिता ये कस्मिन अर्थे प्रतिष्ठितम्, ये दो चीज कहां रहते हैं। किम के तेषु तेषु भावेषु, पहला विकल्प ये हुआ, क्या जो जो पदार्थ जहां जहां दिख रहा है और जहां जहां रह रहा है, क्या तत्तत् पदार्थ में ही सन्निहित है। अस्ति भातिता, अस्तिता और भातिता, या फिर सर्वात्मनि ईश्वरे, ये दो चीज ईश्वर में है। होनापना और दिखनापना ये वस्तु धर्म है कि ईश्वर धर्म है, ये विकल्प आया। आप लोग तो पुराने सनातनी हैं और पुराने सत्संगी हैं, इसलिए आपके तरफ से जवाब तो यही हो गया कि ये दोनों चीज ईश्वर में सन्निहित हैं। लेकिन कोई आधुनिक वैज्ञानिक से पूछो, ये जो पेपर वेट है इसका होनापना ये पेपर वेट में ही है कि कहीं और है, तो आप यदि कहोगे कि इसका वनापना ईश्वर में सन्निहित है तो आपको मूर्ख बनाएगा। वो कहेगा कि कैसे वनापना किसी और में और वो यहां, तो मूर्ख बनाएगा। और इसका जो जाननापना है वह इसी में है कि कहीं अन्यत्र है। और आप और हम तो पुराने सत्संगी हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये दो चीज अस्तिता और भातिता ये ईश्वर में है, ये ईश्वरगत धर्म है, ईश्वरगत स्वभाव है, वस्तुगत धर्म नहीं है, वस्तुगत स्वभाव नहीं है। जैसे दाहापना और प्रकाशपना अग्नि का धर्म है, ये निर्विवाद है, प्रकाश और दाहा गर्मी ये अग्नि का धर्म है, ये अग्निनिष्ठ है, अग्नि में रहता है, अग्नि को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है। सामान्य व्यवहार में हम यही मानते हैं, लकड़ी में दाहापना नहीं है और लकड़ी में प्रकाशपना नहीं है, परंतु उस लकड़ी में यदि अग्नि का संचार होता है तो अग्नि जहां विद्यमान रहता है वहां प्रकाशता भी रहता है और दाहता भी, दोनों। इसी तरह जैसे प्रकाशता और दाहता, दाहकता, ये दो धर्म अग्नि धर्म है, वस्तु धर्म नहीं, अग्नि इतर अन्य वस्तु में वे दो चीज नहीं रहते, इसी तरह होनापना और जाना जानापना, अस्तिता और भासिता, ये दोनों पदार्थों में परमात्मा में सन्निहित है, परमात्मा का धर्म है, परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा के स्वरूप है, अतः परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ में ये दो चीज नहीं हो सकते। यही उत्तर दिया, लेकिन यहां विकल्प के प्रश्न के रूप में रखा गया है। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते, तच्च अस्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितं, किं तेषु तेषु वा अर्थेषु, किं वा सर्वात्मनीश्वरे। ये दो चीज तत्त्व पदार्थों में रहते हैं कि कोई सर्वात्मरूप परमात्मा में रहता है। यदि अलग अलग पदार्थ में रहते हैं माना जाए तो फिर सत यानी सत्ता अनेक मानना पड़ेगा। सत्ता अनेक मानने का मतलब हुआ कि सत वस्तु अनेक मानना पड़ेगा। इसकी सत्ता ये स्वतंत्र इसमें है और इसकी सत्ता स्वतंत्र इसमें है, इसकी सत्ता स्वतंत्र इसमें है, तो ये तीन वस्तु हैं, तो ये तीन की सत्ता भी अलग अलग है, ये मानना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि सत वस्तु तीन हो गए, तो जगत में अनंत वस्तुएं हैं, तब उन अनंत वस्तुओं में रहने वाला जो सत्ता है वे भी अनंत मानते हैं, तो सत अनंत हो जाएगा। सत्ता का अर्थ सत है, ये बात ध्यान देना, सत्ता का अर्थ होता है सत, सत वस्तु यानी सत्ता, सत्ता माने सत, सत कभी भी अभाव नहीं होता है। वस्तु का अभाव हो सकता है लेकिन सत का अभाव नहीं होता। और दूसरी बात वेदांत का यह चिंतन है कि एक ही सत वस्तु सर्वत्र सभी असत वस्तुओं में उस असत वस्तु की सत्ता बनकर रह रहा है। तो आप कहोगे तब तो फिर कोई वस्तु बाधित ही नहीं होंगे, नष्ट ही नहीं होंगे। वस्तु नष्ट होंगे लेकिन सत्ता नष्ट नहीं होगी, ये वेदांत का चिंतन है। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा दूं, जैसे मिट्टी का ये कोई घट बना, तो घट बनते ही हम ये व्यवहार करते हैं कि घट अस्ति, खड़ा है, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। घट बना, घट बनते ही हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, घड़ा है। तो घड़ा हो गया कंबग्रियमान, है क्या हो गया, तो है उस घड़े की सत्ता। अब वो सत्ता पहले कहां थी, तो मृत्तिका में थी वो सत्ता, मृत्तिका से घट बनने पर वो सत्ता मृत्तिका की सत्ता घट में प्रतीत होने लग गए। मृत्तिका की सत्ता ही घट में प्रतीत होने लग गया। ऐसा नहीं है कि मृत्तिका को छोड़कर आ गए, क्योंकि हम सत्ता को व्यापक मानते हैं और सत्ता को एक मानते हैं। अतः जितने भी पदार्थ बनते जाएंगे, सत्ता व्यापक होने के कारण हर बने हुए पदार्थ में उसकी उपलब्धि होगी। सत्ता यदि परिच्छिन्न होती तो एक पदार्थ में उसकी अस्तित्व उसकी उपलब्धिता रहती तो दूसरे में उसकी उपलब्धिता न होती। तो सत्ता परिच्छिन्न नहीं है, सत्ता व्यापक है, अस्तित्व व्यापक है, वनापना व्यापक है। व्यापक किस अर्थ में कि अनेक रूप में व्यापक है, ऐसा नहीं। जैसे कि इस हॉल के अंदर परमाणु व्यापक है, पृथ्वी के छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, चारों तरफ उड़ रहे हैं, लेकिन उन परमाणु के यानी वो पृथ्वी के छोटे सूक्ष्म कणों की इस हॉल के अंदर की व्यापकता वो एक के रूप में व्यापकता नहीं है। तो पूरे हॉल में लेकिन अनेक के रूप में व्यापकता है, क्योंकि परमाणु सावयव है। इस तरह उस परमाणुओं की व्यापकता वेदांत नहीं मानता है। वेदांत की व्यापकता क्या है कि जैसे इस हॉल के अंदर जो हॉल आकाश है वह एक है, एक होने के कारण पूरे हॉल में वह व्याप्त है, और एक ही आकाश इस हॉल के अंदर पूरी तरह व्याप्त होने के कारण इस हॉल के अंदर जितनी भी वस्तुएं विद्यमान रहेंगी उन सारे वस्तुओं को वो आकाश अवकाश देगा कि नहीं है? हॉल के अंदर एक ही आकाश पूरे हॉल में व्यापक है, व्यापक होने के कारण इस हॉल के अंदर जो भी पदार्थ आएंगे वो हॉल आकाश उन पदार्थों को अवकाश देगा कि नहीं, जगह देगा कि नहीं, होने के लिए जगह देगा कि नहीं, ये हॉल आकाश की व्यापकता है। इसी तरह प्रकाश की व्यापकता है। जैसे हॉल के अंदर एक प्रकाश है मान लो, वह एक ही प्रकाश पूरे हॉल के अंदर व्याप्त होकर फैला हुआ है, तो इस हॉल के अंदर जितने भी पदार्थ आएंगे सभी पदार्थों को वो प्रकाशित करेगा कि नहीं? जैसे सूर्य का प्रकाश हॉल के अंदर प्रकाशित हो रहा है और उसी के प्रकाश से हॉल के अंदर उजाला है, प्रकाश है, तो वे सूर्य का प्रकाश हॉल के अंदर अलग अलग कणों में व्याप्त नहीं है। जैसे मिट्टी के धूल हॉल के अंदर अलग अलग कणों में व्याप्त है, इस तरह सूर्य का प्रकाश अलग अलग कणों में व्याप्त नहीं है, एक ही प्रकाश पूरे हॉल में व्याप्त है। तब वो प्रकाश हॉल के अंदर जितने भी पदार्थ आएंगे सबको वह प्रकाशित करेगा कि नहीं? करेगा। इसी तरह अस्तिता और भासिता, जैसे अस्तिता यानी स्पेसता ये आकाश में है, हॉल आकाश के अंदर जितने पदार्थ आएंगे सभी को वह स्पेस देगा, अवकाश देगा। जैसे प्रकाशता सूर्य में है, हॉल के अंदर जितने पदार्थ आएंगे और सभी को प्रकाशित करेगा। तो आकाश ने अवकाश दिया, सूर्य के प्रकाश ने क्या किया, उन पदार्थों को प्रकाशित किया। तो यहां अवकाश सूर्य के प्रकाश में नहीं है, ध्यान देना, अवकाश सूर्य के प्रकाश में नहीं है। अवकाश देना सूर्य के प्रकाश की क्षमता नहीं है, आकाश में है, और प्रकाश करना आकाश की क्षमता नहीं है, वह फिर सूर्य में है, अलग अलग हो गए कि नहीं? क्या इसी तरह अच्छा कुर्सी में न अवकाश देने की क्षमता है न प्रकाशित करने की क्षमता है, इसमें न अवकाश देने की क्षमता है न प्रकाशित करने की क्षमता है, इस पेपर वेट में इसको अवकाश दिया सूर्य ने, प्रकाशित किया माने अवकाश दिया आकाश ने, प्रकाशित किया किसने, सूर्य ने। और ये दोनों से भिन्न हो गया कि नहीं है? ये दोनों से भिन्न हो गया कि नहीं? अवकाश आकाश के अवकाश से भिन्न ये हो गए और सूर्य के प्रकाश से भिन्न ये हो गए। तो इसमें आकाश का अवकाश सूर्य का प्रकाश दोनों आकर रह रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये पेपर वेट है। बड़ा आराम से मैं समझा रहा हूं, वेदांत गणितीय सिद्धांत है आपको। अब क्या इसी तरह अलग अलग चीज में अस्तिता और धातिता ये अलग अलग में है कि एक ही ईश्वर में है? तो हमारी मान्यता तो ये है, वेदांत की मान्यता क्या है, एक ही ईश्वर में अस्तिता और भातिता ये दोनों ही हैं। ईश्वर आकाश को भी अवकाश देने वाला है, ईश्वर आकाश को भी अवकाश देने वाला है और सूर्य को भी प्रकाश देने वाला है। बात समझ गए? ईश्वर आकाश को भी अवकाश देने वाला है। आज आप आकाश है कहते हो ना, आकाश का होना पना ये कहां से आया? आकाश का जो होना पना है ये तो परमात्मा से ही आया है ना। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्म। तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, जिसकी सत्ता को प्राप्त करके मृषा अपि अमृषैव भाति, जिसकी सत्ता को प्राप्त करके मिथ्या वस्तु भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। मिथ्या वस्तु क्या है? तो सर्प। उस मिथ्या सर्प को सत्ता किसकी प्राप्त हुई है? रज्जु की। रज्जु की सत्ता प्राप्त करके मिथ्या सर्प भी सत्यवत भासित होने लग गया। रज्जो यथा हेर ब्रह्म। तुलसीदास जी ने आगे व्याख्या दृष्टांत दी, यह सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, मृषा अपि अमृषैव भाति रज्जोर यथा हेर ब्रह्मा, जस्ति रस्सी में अहि का भ्रांति। तो इसी तरह ये वस्तु मृषा है, ये पेपरवेट है ही नहीं, ये ख्याल रख लेना। वेदांत की दृष्टि में ये पेपरवेट नहीं है, लेकिन जो मृथा मृषा है पेपरवेट है ही नहीं, इसको सत्ता प्राप्त हुआ, दूसरे की सत्ता प्राप्त हो गई, तो जो नहीं है वो भी है के तरह भासित होने लग गया। और इसी तरह इसको इसमें प्रकाशता भी नहीं है, तो उसी की प्रकाशता प्राप्त होकर ये दिखने भी लग गया। तो होनापना और दिखनापना का जो व्यवहार करने लग गए हम, इसके साथ ये है दिख रहा है, हम ये दो चीज कर रहे हैं इसके साथ, तो ये दोनों होनापना और दिखनापना ये इसका नहीं है। यदि दिखनापना इसका होता तो अंधेरा में भी दिखता। बात समझ में आई कि नहीं? दिखनापना यदि इसमें होता तो अंधेरे में भी दिखता, अंधेरे में नहीं दिखता है। दिखनापना भासित होनापना इसमें होता तो सुसुप्ति में भी दिखता, गहरी निद्रा में दिखता है, ये नहीं दिखता। इसी तरह होनापना इसमें यदि इसका अपना होता तो सुसुप्ति में भी होता, गहरी निद्रा में भी इसके होनापना बाद नहीं होती, दिखनापना भी बाद नहीं होता, होनापना भी बाद नहीं होता। लेकिन गहरी निद्रा में जाते हैं तो दोनों चीज इसके बाद हो जाता है, होनापना भी बाधित, दिखनापना भी बाधित। तब क्या कहते हैं कि सुसुप्ति में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो कुछ नहीं पता किसको? जब प्रश्न करते हैं तो मुझे ये कहना पड़ता है, कुछ नहीं था वहां, कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था कहां? मैं जहां था, मैं जहां था वहां कुछ नहीं था। तुम कहां थे? सुसुप्ति अवस्था में। इसका मतलब वो अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर रहा है, कहने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, और सभी के सत्ता का निषेध कर रहा है लेकिन खुद की सत्ता का निषेध कर रहा है। कुछ नहीं थे तो तुम थे कि नहीं? तो अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति तो कह देगा कि मैं होता तो मुझे भान होता कि मैं यहां हूं, मुझे लगता मैं भी नहीं था, वो यही कहेगा, क्योंकि इतनी विचार तो कर नहीं पा रहा है वो। और जब हम उससे पूछते हैं यदि तुम नहीं थे तो कुछ नहीं था, ये भान किसको हुआ, जब पूछते हैं तो उसको झक मार कर कहना पड़ता वो तो मुझे हुआ, पड़ता कि नहीं बोलिए, उसको झक मार कर भी ये कहना पड़ता कुछ नहीं था ये भान किसको हुआ, तो उसको हर हालत में यही जवाब देना पड़ता कि मुझे हुआ है। इसका मतलब तुम ये कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं था, और तुम ये विरोधाभासी बोल रहे हो कि मुझे हुआ और मैं नहीं था, तुम नहीं थे तो तुम्हें कैसे भान हुआ कि कुछ नहीं था का भान कैसे हुआ। इसका मतलब है कि तुम्हारी सत्ता का कभी भी अपलाप नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में तुम अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकते हो। तो ये विचार बहुत सूक्ष्म है, विचार के ये बीज हैं, पूरे दक्षिणामूर्ति का विचार करने के लिए ये सूत्र हैं। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितम् किं तेषु तेषु वार्थेषु किं वा सर्वात्मनीश्वरे, या तत्तत् पदार्थों में ही वो दो चीज हैं कि उन पदार्थों से भिन्न सर्वात्मा ईश्वर में है। ईश्वरत्वं च जीवत्वं सर्वात्मत्वं च कीदृशम्। तो फिर ईश्वर में है कि जीव में है, ये प्रश्न फिर उठा। ये अस्तिता और भातिता ईश्वर में है कि जीव में है? तो इसका उत्तर दिया है, क्योंकि जीव भी स्वतंत्र वस्तु नहीं है, ध्यान देना, जीव स्वतंत्र वस्तु नहीं है, जीव भी पराधीन वस्तु है, अन्य पदार्थों में प्रतीत होने वाली चेतना है। जीव का अस्तित्व तो अंतःकरण और अंतःकरण में उटस्थ का प्रतिबिंब, ध्यान देना, जीव उसको कहते हैं, इसी को चिदाभास कहते हैं। चिदाभास का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चिदाभास का अस्तित्व के लिए क्या चाहिए, अंतःकरण, और अंतःकरण में चित्त का आभास प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब सहित अंतःकरण, अंतःकरण सहित जो प्रतिबिंब है उसी का नाम जीवात्मा है। यदि किसी प्रक्रिया से, किसी साधना से, जैसे कि वेदांत उस प्रक्रिया को बताते हैं, किसी प्रक्रिया और किसी साधन से अंतःकरण का नाश हो जावे तो जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता है, और जबकि वेदांत की प्रक्रिया अंतःकरण का नाश ही है, अंतःकरण भी बना रहे और जीव की जीवपना खत्म हो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अंतःकरण नाश होते ही जीव की जीवपना नाश हो जाए, क्योंकि उपाधि से ही जीव सिद्ध हुआ है, और जिस उपाधि से वह जीव की जीवपना सिद्ध हुई है वह उपाधि के नाश होते ही वह जीव की जीवपना भी समाप्त हो जाता है। जैसे पानी के चलते सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य पानी के अंदर प्रतीत हो रहा है, उस पानी के सूखते ही सूर्य का प्रतिबिंब भी बाधित हो जाएगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब के रूप में नहीं दिखेगा। तब बिंब सूर्य को पानी से कोई लेना देना नहीं है, बिंबभूत सूर्य को पानी से कुछ लेना देना नहीं, प्रतिबिंब भूत सूर्य को पानी से संबंध है, बात समझ गए ना? पानी का अस्तित्व है तो फिर वह प्रतिबिंब सूर्य का अस्तित्व है। पानी यदि सूख जाता है तो प्रतिबिंब सूर्य बाधित हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन पानी सूखने पर भी अंतरिक्षस्थ जो सूर्य है, बिंब रूप सूर्य है, उसको पानी के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह कूटस्थ को अंतःकरण के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कूटस्थों को अंतःकरण हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं, लेकिन चिराभास को जिसको वेदांत जीव कहता है और उसका दूसरा पर्यायवाची चिदाभास, चिदाभास कहो और जीव कहो एक ही चीज है, इसका अंतःकरण में निर्भर करता है। अंतःकरण है तो चिदाभास है, अंतःकरण नहीं तो चिदाभास की चिदाभास पना खत्म हो जाता है, आभास पना खत्म। एक बात और ध्यान देना, चिदाभास की आभास पना खत्म, क्योंकि चित्त की चित्तता तो खत्म हो ही नहीं सकती है। चित्त की चित्तता, चित्तता, चेतनता, चैतन्य की जो चेतनता है वो तो अंतःकरण रहे चाहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चेतनता को अंतःकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपकूटस्थ में अंतःकरण नहीं है, चेतनता है। ईश्वर में अंतःकरण नहीं है, चेतनता है। ब्रह्म में अंतःकरण नहीं है, चेतनता है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் எரிபத்த நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் சுனேங்கே ஔர் ஏக் தட்சிண பாரதிய சந்த் யா நாயன்மார் கி கஹானி. இன்கா நாம் ஹை எரிபத்தர். मध्यकालीन चोल राजाओं की दूसरी राजधानी थी करूवर। वहां पुगल चोलन नामक सम्राट राज्य करते थे। उसी करूवर में एरिपत्तर नामक शिव भक्त भी रहते थे। वे सदा अपने हाथ में एक परशु रखते थे। शिव भक्तों को कष्ट अथवा हानि पहुंचाने की गलती या अपराध करने वाले को परशु द्वारा तत्काल दंडित करना ही उनका लक्ष्य था। एक दिन शिवकामी आंडार नामक एक वृद्ध शिव भक्त एक टोकरी में विविध रंगों के सुंदर पुष्पों का चयन कर शिव को अर्पित करने के लिए जा रहे थे। उसी क्षण सम्राट की हाथी पीछे से आ रहा था। उसने अपनी सूंड से टोकरी छीन कर उसे नीचे पटक दिया। बिखरे फूलों को देखकर वृद्ध शिवकामी आंडार अत्यंत व्याकुल हो उठे और रोने लगे। उनके हृदय के रोदन का स्वर सुनकर एरिपत्तर संत न जाने कहां से वहां आ पहुंचे। घटनाक्रम को जानकर उन्होंने तत्काल अपने परशु से सम्राट के हाथी की सूंड काट दी। हाथी के महावत और रक्षक वहां से भाग गए और सम्राट को सूचना दी, कुछ लोगों ने आपके हाथी को मार गिराया है। सम्राट ने समझा कि कोई शत्रु राजा सेना लेकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और उन्होंने तत्काल ही उस घटनास्थल पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सेना सहित उस घटनाक्रम पर पहुंचे तो राजा चकित होकर दिखने लगे कि न वहां पर कोई शत्रु राजा था और न कोई शत्रु राजा की सेना। वहां तो एक तो एरिपत्तर स्वयं खड़े थे। सम्राट आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। पूरी घटना की जानकारी प्राप्त कर सम्राट ने बहुत दुखी मन से एरिपत्तर के समीप गए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, शिव भक्त के प्रति मेरे हाथी द्वारा जो अपराध हुआ है उसके लिए सिर्फ हाथी को दंडित करना पर्याप्त नहीं है। मैंने ऐसा अपराध होने दिया, इसलिए इसका उत्तरदायी मैं ही हूँ। न्याय के अनुसार मुझे भी दंड मिलना चाहिए। हे हेरिपत्तर, हे स्वामी, मैं इस योग्य भी नहीं कि आपके परशु से मारा जाऊं। लीजिए मेरा खड़ग, इससे मेरा अंत कर दीजिए। ऐसा कहकर राजा ने खड़ग शिव भक्त एरिपत्तर के समक्ष रख दिया। यह सुनकर एरिपत्तर संत भय से कांप उठे। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई सम्राट भी ऐसा प्रबल निष्ठावान भक्त हो सकता है। सम्राट की शिव भक्ति और उनकी विनम्रता को समझे बिना उन्होंने उनको दुख दिया। इस विचार से उनके मन में आत्मग्लानी भर उठा। ग्लानी और पश्चाताप में एरिपत्तर सम्राट की तलवार से अपनी ही गर्दन काटने को उद्यत हो गए। चौंक कर राजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस पारंपरिक अनुकंपा की भावना से परिस्थिति विश उठी हुई विपदा का प्रेम पूर्वक समाधान हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों के हृदय में जो सच्चा प्रेम और भक्ति भावना है उसे संसार के सामने उजागर करने के उद्देश्य से ही हमने यह लीला रची थी। यह शिव की ही वाणी थी। भगवत कृपा से सम्राट का हाथी भी जीवित हो उठा और पुष्प स्वतः ही टोकरी में पूर्ववत एकत्र हो गए। सम्राट पुगल चोलन ने एरिपत्तर को हाथी पर आगे बिठाया और स्वयं उनके पीछे बैठकर प्रस्थान किया उस स्थान से। कालांतर में एरिपत्तर नायनार को शिवलोक में स्थान मिला और वे कैलाश में शिवगणों के मुखिया बने। एरिपत्तर जैसे शिवभक्त भी बाहरी वेशभूषा के कारण कभी कभी लोगों के समझ में नहीं आते हैं। एरिपत्तर के मन में ऐसा पूर्वाग्रह था कि सम्राट होने के नाते पुगल चोलन संत नहीं हो सकते, परंतु सम्राट तो इतने विनम्र संत निकले कि स्वयं के लिए मृत्युदंड मांगा और यह भी कहा कि मैं आपके परशु द्वारा मारे जाने के योग्य भी नहीं, मतलब आप मेरा खड्ग से ही मुझे इस शरीर रूपी माया से मुक्त करें। इसे एरिपत्तर को सम्राट के प्रति एक नवीन दृष्टि मिली। इस कथा में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रभु प्रेम में सरोवर दो संत आमने सामने आए हैं और एक दूसरे पर दोष लगाने के स्थान पर दोनों ही अपने आप को स्वयं दोषी सिद्ध करने पर दंड दिलाने की होड़ में लगे हुए थे। यह प्रेम की परिपक्व स्थिति थी। एरिपत्र संत आज भी हमारे बीच में उजागर हैं, उनके इस भक्तिभाव को आज भी लोग याद करते हैं और साथ ही सम्राट पुगलचरण को भी याद करते हैं। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Shankaracharya ji. Thank you. Om Namah Shivaya.

చంద్రశేఖర రక్షమా, చంద్రశేఖర రక్షమా, చంద్రశేఖర రక్షమా. ఓం ఓం ఓం. ప్రేమపురి ఆశ్రమాయజిత్ తథా కృష్ణ కుమార్ దయ్య గీతా చింతన్మాల అంతర్గత్ ప్రాయోజిత్ కార్యక్రమ అంతర్గత్ ఆదిగురు భగవాన్ శంకరాచార్యజీకి రచన శివానంద లహరి స్తోత్ర కే ఆధార్ పర్ కుశ శివ భక్తి భావ కా ప్రసంగ విచార్ చల్ రహా హై. ఇస్కే లియే श्लोक नंबर है 76. भक्तिर्महेश पद पुष्कर्मा वसंती, भक्तिर्महेश पद पुष्कर्मा वसंती, कादंबनीव कुरुते పరితోషవర్షం. సంపూరితో భవతి యస్య మనస్తటాకః, తజ్జన్మ సస్యమఖిలం సఫలం చ నాన్యత్. బుద్ధి స్థిర భవతుమీశ్వర పాద పద్మ, శక్త బధుర్ విరహిణీవ సదా స్మరంతి. సద్భావన స్మరణ దర్శన కీర్తనాది, సమ్మోహితేవ శివమంత్ర జపేన వింతే. సదుపచార విధి స్వనుబోధితాం, సవినయాం సురిదం సముపాశ్రితాం, మమ సముద్ధర బుద్ధిమిమాం ప్రభో, వరగుణేన నవోడవదూమివ, నిత్యం యోగి మన సరోజదలసన్ చార సమక్షత్క్రమః. సంబోధీన కథం కఠోరయమసరా వక్ష కటాక్షతి. వక్ష కవాటచ్చతి అత్యంతం మృదులం త్వదంగ్రియుగలం. ఆమె మనశ్చింతయ ఏతత్ లోచన గోచరం కురు విభో. హస్తేన సంవాహయే నిత్యం యోగి మన సరోజదలసం, చారక్షమత్వక్రమ సంభూతేన కథం కఠోరయమరాం సంభూతేన కథం కఠోరయమరాడ్.
वक्ष कवाटच्छति अत्यंतं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलम् आमे मनचिन्तयत् एतत् लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये यस्य ते स जनिं मनोऽस्य कठिनम् तस्मिन्नटा नीतिमत् द्रक्ष्यायै गिरिशीम्नि कोमलपदौ न्यासः पुराभ्यासितः नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस् तल्पेषु विद्यादिषु प्रायसत्सु शिलातलेषु नटनम् शम्भो किमर्थं तव भक्ति महेश पद पुष्करमावसन्ति। भक्ति शिव भक्ति परमात्मा की भक्ति जो जीवात्मा के हृदय का भाव विशेष है उसको भक्ति कहते हैं। परमात्मा प्रति आस्था, परमात्मा प्रति को विश्वास, परमात्मा प्रति श्रद्धा, इन सबसे युक्त जो हृदय का भाव है उसी को भक्ति कहते हैं। कैसी भक्ति? महेश पद पुष्करम आवसंती भक्ति। महेश माने परमात्मा, भगवान शिव, महान ईशः महेशः, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान, कर्तुम अन्यतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा, जो ईश भी है और महान भी है, इसीलिए उसका नाम महेश हुआ। महेश पद यानी परमात्मा के चरण। मान लो परमात्मा का जो चरण है वही पुष्करम पुष्कर है। पुष्करम आवसंतम, पुष्कर शब्द का अर्थ दो होता है। कोश में पुष्कर शब्द का अर्थ एक सरोवर भी होता है और पुष्कर शब्द का अर्थ आकाश भी होता है। आकाश को भी पुष्कर कहते हैं और सरोवर को भी पुष्कर कहते हैं। यहां भगवान शिव के चरण को ही आकाश की उपमा दी है। भगवान शिव का जो चरण है वो आकाश रूप है, आकाश। इसलिए भक्ति शिव चरण रूपी आकाश में रहने वाली, महेश भक्ति। आवसंती आसमंतात वसंती निवसंती इति पुष्कर पुष्करम आवसंती, आकाश में रहने वाली। कौन सी आकाश? भूताकाश नहीं, परमात्मा के चरण रूपी आकाश में। कादम्बनी वा
कादंबनी अर्थात बादल। बादल हमेशा आकाश में ही विचरण करते हैं, है ना? बादल आकाश में ही विचरण करेंगे तो भक्ति रूपी बादल कहां विचरण करेंगे? परमात्मा के चरण रूपी आकाश में विचरण करते हैं। परितोष वर्षां कुरुते, बादल का काम क्या है? आकाश में विचरण करके बादल का काम क्या है? आजकल जो कर रहे हैं, वर्षम कुरुते, बादल वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं, इसको उपमा अलंकार बोलते हैं। यहां अलंकार प्रयोग है, उपमा अलंकार, सादृश्य उपमा अलंकार। जैसे बादल आकाश में विचरण करते हुए बारिश वृष्टि करते हैं, पानी को बरसाते हैं, इसी तरह भगवान शिव के चरण रूपी आकाश में विचरण करने वाली शिव भक्ति व कादंबनी व वही है बादल मानो, तो वह किसकी वर्षा करते हैं? परितोष, सर्वत्र संतोष की वृष्टि करते हैं, करती है। पहले भी इस प्रकार की व्याख्या हो चुकी है। शिव भक्त किसी भी अवस्था में असंतुष्ट नहीं हो सकता। परमात्मा का भक्त किसी भी अवस्था में असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। हर अवस्था में वह संतुष्टि का ही अनुभव करता है और संतुष्टि को ही व्यक्त करता है, क्योंकि संतोष परितोष, परि माने चारों तरफ से, परिता तोष परितोष, चारों तरफ से हर अवस्था में हर परिस्थिति में वो संतुष्ट ही रहेगा। संसार और सांसारिक विषयों से संतुष्ट रहना ही शिव भक्त का लक्षण है। दूसरी बात, साधना में असंतोष रहना, सांसारिक पदार्थों से संतुष्ट रहना, ये भक्त का लक्षण है। भक्त साधना के माध्यम से जिस भूमिका में पहुंचता है, क्रमशः आरूढ़ आरुरुक्षु की भक्ति

बढ़ता ही रहता है। इसलिए ज्ञानी त्वात्मैवमेव मतम, इस चौथे प्रकार के जो ज्ञानी भक्त हैं उस भूमिका में जब तक नहीं पहुंचेगा, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, उस भूमिका में जब तक नहीं पहुंचेगा भक्त संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि का लक्षण होता है इति अलम। संतुष्टि का लक्षण क्या है? इति अलम, जो है जहां है वो ठीक है। असंतुष्टि का लक्षण क्या है? इतनी से पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए। अनलम, अलम बुद्धि तो हो ही नहीं सकता है असंतुष्टि। तो अलम बुद्धि जहां हो तो उसको संतोष कहते हैं। तो साधना में अनलम और भोग भूमिका में अलम बुद्धि, यही भक्तों का लक्षण है। आप लोगों ने सुना है, पत्नी मरी सुना तो भलो थयो भागी जंजाल, है ना नरसिंह मेहता? यही तो आलम बुद्धि है, यही तो आलम बुद्धि है, यही तो संतोष बुद्धि है। ठीक हुआ, महात्मा लोग जो बहुत सुनाते हैं, ईश्वर जो करता है ठीक करता है। तो भक्त की दृष्टि तो यही नहीं है, ईश्वर जो करता है वो ठीक करता है, गलत कर ही नहीं सकता है। हमारी अपेक्षा से वह गलत हो जाता है, लेकिन ईश्वर की तरफ से वो गलत नहीं होता। गलती और सही का मूल्यांकन तो हम करते हैं हमारे अपने दृष्टिकोण से, अपने मापदंड से। हम जब समीक्षा करते हैं तब तो जो हमारे अनुकूल हो गया वो सही हो गया, जो हमारे प्रतिकूल हो गया तो गलत हो गया। अब हम ये विचार नहीं कर सकते हैं आज का जो प्रतिकूल है संभव है कि कल वह अनुकूल हो जावे, उसके लिए आज यह प्रतिकूल किया है परमात्मा ने। तब ये सोचेंगे तो आज का प्रतिकूल भी हमारे लिए अनुकूल ही है, लेकिन हम इतने हतार कर लेते हैं, इतनी जल्दीबाजी कर लेते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी प्रसंग हो, प्रतिकूल तो होनी ही नहीं चाहिए। अब ये संभव है ही नहीं। तो आप लोगों ने बहुत सुना है परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, कहानी बहुत बार सुना है आप लोगों ने। एक राजा था और एक मंत्री था। राजा की मान्यता थी कि हम जो करें वो सही हो, और जब तक हम बुद्धि लगाकर ना करें तब वो गलत हो जाता है। तो इसलिए अपने को ही करना चाहिए तभी सही होगा, दूसरा का किया हुआ सही नहीं हो सकता है। तो मंत्री का कहना था कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है, इसलिए ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर जो करता है सही करता है, गलत नहीं करता ईश्वर। तो एक बार राजा अपने तलवार को साफ कर रहा था तो अपने उंगली कट गई, तो जोर से चिल्लाया राजा, उंगली कट गई, तो जोर से चिल्लाया राजा, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज? बोले देखो अपनी ही तलवार से अपनी उंगली कट गई। ईश्वर जो करता है सही करता है महाराज। तो राजा को तो गुस्सा आ गया, ते मूर्ख कहीं का

नाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस सृष्टि के आदिकाल से मैंने जीवों के कल्याण के लिए दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, दो प्रकार की निष्ठा बताई है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, हे अनघ, मया पुरा द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता बताया है। कौन सी? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो ज्ञानी हैं उनके लिए सांख्य निष्ठा, कर्मयोगेन योगिनाम और कर्मयोगियों के लिए योग निष्ठा। इस प्रकार की दो प्रकार की निष्ठा अर्थात दो प्रकार की प्रवृत्ति जीवों में अनादिकाल से दिखाई देती है। इसी को ही प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। ये क्यों बताई है? ब्रह्म सूत्र में दो प्रकार की उपासना बताई है। मूर्तंचा मूर्तंच ईश्वर के दो रूप है, एक मूर्त और एक अमूर्त। आज का जो पर्व है ये शिव पर्व है, शिव पर्व। शिवरात्रि का दिन है कि नहीं? आज आज क्या है? शिवरात्रि। शिव का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, जो कल्याण स्वरूप है। शिवम कल्याणम अर्थात जो कल्याण स्वरूप है वही क्या है? शिव है। परमात्मा के दो रूप है, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त रूप भजनीय है और अमूर्त रूप जाननीय है। उपासना भजन मूर्त रूप की होती है, परंतु जानना अमूर्त रूप को चाहिए। भजन के साथ साथ जानना भी हो तो भजन भक्ति बन जाता है, और यदि भजन के साथ जानना नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भजन पुण्य बन जाता है। पुण्य, आप कहेंगे कि भजन भक्ति बनना और भजन पुण्य बनना, इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। भक्ति भजन भक्ति बन जाए तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, और भजन पुण्य बन जाए
तो लोकांतरों की प्राप्ति होगी। पुण्य का फल परमात्मा नहीं है, भक्ति परमात्मा को मिला सकती है, पुण्य सुख को मिला सकता है, पुण्य सुख दे सकता है, परंतु पुण्य परमात्मा नहीं दे सकता है। अब प्रश्न है कि भजन भक्ति बनना चाहिए या भक्त भजन पुण्य बनना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब परमात्मा को बिना जाने बिना समझे यदि भजन करते हैं तो वो पुण्य जरूर होगा और उससे आपको सुख जरूर मिलेगा, दुख की हानि जरूर होगी, हो सकता है उत्तम लोक की प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परमात्मा के नाम में शक्ति अग्नि को जानकर के स्पर्श करोगे तब भी हाथ जलेगा और अनजान में भी स्पर्श होगा तब भी हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना है। इसी प्रकार से परमात्मा का भजन जानकर के करोगे तब भी फल मिलेगा, अनजान में करोगे तब भी फल मिलेगा, परंतु फल में अंतर होगा। भजन भक्ति बनना चाहिए, भजन पुण्य नहीं बनना चाहिए। तो भजन भक्ति कैसी बनेगी? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है रस। रस भजनम नाम रसनम, भजन रस बन जाए। क्या बनना चाहिए? भजन जो है वो रस बनना चाहिए। कौन सा रस? साहित्य में नवरस है, नवरस है ना, आप लोग जानते ही है, परंतु ये साहित्य के रस भजन से नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखो। श्रृंगार रस, करुण रस आदि आदि जो साहित्य में जो नवरस बताए वो तो शब्द जन्य रस है, ध्यान रखना, शब्द के लालित्य से उत्पन्न होने वाले भाव। देखो भजन शब्द शब्द नहीं है, हम तो राम राम का राम राम जपते हैं या तालियां पिटने लगते हैं या मंजीरा ढोल चिमटे बजाने लगते हैं तो कहते भजन हो गया। भजन का अर्थ होता है हमारे मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का समर्पण। केवल वाणी नाम जपती है परंतु मन विषयों में भटकता है, आंख रूपों को देखती है, कान शब्दों को सुनते हैं। तुकाराम ने ऐसे भजन की निंदा की है, भजन ते ओंगलवाने नर का जाने चुके ना, ऐसा भजन जहां आप इंद्रियों की दौड़, मन की दौड़, भोगों की ओर हो, विषयों की ओर हो, वो भजन नहीं होता है। इसलिए भजन में बड़ा संयम चाहिए। और जिस भजन में संयम नहीं है वो असंयमित भजन परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकता है, वो भक्ति नहीं बन सकता है। भक्ति इतनी कठिन नहीं है, सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। हां ये धर्म है, ध्यान रखना, ये सत्कर्म है,
जो हम मंदिर में जाते हैं, नाम जपते हैं, ये सत्कर्म है, ये धर्म है। हां, ये पुण्य जरूर देगा तुम्हें, परंतु परमात्मा को नहीं मिला सकता है, ध्यान रखो। इसलिए आजीवन आप ये करते रहे, आपके जीवन में से ना भय समाप्त हुआ, ना काम क्रोध आदि विकारों का प्रवाह मिटा, ना आपकी बुद्धि में स्थिरता आई, ना मन में शांति मिली। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमारा भजन, हमारे भजन में कुछ त्रुटि है। इस पर गौर करने की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भजन में संयम होना चाहिए, संयम। संयम का अर्थ बांध करके रखना नहीं होता है, हमारी गति एक वस्तु में चलना चाहिए, उसका नाम संयम है। जैसी गोपियों का इंद्रियों की गति, मन की गति, बुद्धि की गति एक ही श्याम सुंदर में चल रही थी, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावड़े जन धन माता पिता। तुकाराम ने कहा है कि एक विषय बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक विषय। हमारे तो कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है ना? इंद्रिया कुछ करती है तो मन कुछ कहता है, तो बुद्धि कुछ जानती है, एकता नहीं है। और एकता के बिना भक्ति नहीं है, ध्यान रखना। जो इंद्रिया जिधर जा रही है उधर ही मन जाना चाहिए, उधर ही बुद्धि जाना चाहिए। ये तीन आपके पास साधन है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रिया कुछ कहे, परमात्मा का नाम, वाणी परमात्मा का नाम जपे, परंतु मन किसी भोग की इच्छा करे वो ठीक नहीं है। जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु जो तुम्हें फल चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि भजन भक्ति बनना चाहिए, भजन पुण्य नहीं बनना चाहिए। और सगुण साकार के लिए भजन आवश्यक है, समझे? जो भी परमात्मा का रूप आपने मन में धारण किया हुआ है वो रूप परमात्मा का ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, चाहे कोई भी रूप हो, रूप का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि रूप सत्य नहीं है, वो भजनीय है, वो साधन है, स्वरूप की तरफ ले जाने का रूप साधन है। और रूप साध्य नहीं है, स्वरूप साध्य है। इसलिए किस रूप को आप भजते हो वो प्रश्न नहीं है, परंतु भजते कैसे हो इसका महत्व ध्यान रखो। क्या भजते हो उसका महत्व नहीं है, कैसे भजते हो। विषयों का चिंतन करते हुए भजते हो या परमात्मा का चिंतन करते हुए भजते हो? भक्ति का सिद्धांत है
परमात्मा का बन करके परमात्मा को भजो। क्या पहले हमें परमात्मा का बनना होगा, फिर परमात्मा को भजना होगा, तब भक्ति होता है, ध्यान रखना। हम बनते हैं संसार को और भजते परमात्मा को, तो बनोगे किसका? परमात्मा का कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि भजन पुण्य होता है, भक्ति नहीं। हमें लगता है कि हम परमात्मा को बहुत भजते हैं, परंतु उस भजने का फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम परमात्मा के बने ही नहीं हैं। इसलिए भक्ति में भागो भक्ति, अर्थात परमात्मा के भाग में आप रहो। इसलिए तो भक्ति में त्वदीय भक्ति, मदीय भक्ति बताई जाती है। आप परमात्मा का बनने के बिना परमात्मा आपका बनेगा कैसा? वो तो फिर परमात्मा के साथ व्यापार हो जाएगा। जैसा आप किसी बनिया के दुकान पर जाते हो, बनिया को कुछ देते हो, उसके बदले में बनिया तुम्हें कुछ देता है, तुम लेकर के अपने घर में आ जाते हो, तो क्या बनिया के बन सकते हो? क्या बनिया तुम्हारा बनेगा? ना तो उसके बनोगे ना वो तुम्हारा बनेगा, क्या संबंध रहेगा? ऐसा ही तुम जितना भजन करोगे उतना परमात्मा उसके बदले में तुम्हें दे देगा, थोड़ा सा आनंद देगा, थोड़ा सा सुख देगा, परंतु परमात्मा तुम्हारा नहीं बनेगा, क्योंकि आप परमात्मा के नहीं बने हैं, तो परमात्मा भी आपका नहीं बन सकता है। इसलिए देवो भूत्वा देवम एजेत, ये कहा है, पहला परमात्मा का बनो और फिर परमात्मा को भजो। इसलिए समर्पण की आवश्यकता भक्ति के अंदर बताई है, आत्मनिवेदन अर्थात अपने को दे देना। भले तुम रहो संसार में, परंतु बनो परमात्मा का, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप चिंता मत करिए संसार बिगड़ जाएगा, वास्तविक उत्तम संसार ज्ञानी का ही होता है, समझिए ना, भक्त का ही उत्तम संसार होता है। भक्त का संसार आनंदमय होता है, आनंदमय सुखमय होता है। अवघात संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक, तुकाराम कहते हैं, मैं संपूर्ण संसार को सुखमय बना दूंगा और आनंद से संपूर्ण त्रैलोक्य भर दूंगा। क्या आप कह सकते हो ऐसा? बोलो, क्यों? तुकाराम पहले परमात्मा का बन गए, तब परमात्मा का बनने से तुकाराम का संसार सुखरूप हो गया। तुम्हारा संसार सुविधा रूप है, सुखरूप नहीं है। क्या आपका संसार सुविधा रूप है, परंतु सुखरूप नहीं है। जहां सुख होता है वहां सुविधा हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, सुविधा में सुख होता ही नहीं है, ध्यान रखो। क्या तुम्हारी ये झूठी कल्पना है कि ये हमारे पास होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो हमारे पास होगा हम सुखी हो जाएंगे? बंबई में जब आता है ना, तब उसके पास